गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: जय जय जय हो जय राजेंद्र
1: गोविंद जय गोपाल
0: जगत नारायण के छोड़ के संतो

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6
1: Mirchi 1. It's hot.

कभी कभार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम ऐसी कुछ चीजें, हमें भी नहीं पता होता है कि हमें सुनना है या वी नीड दैट थिंग राइट नाउ, और वो आपके सामने आ जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मैंने ये कहीं पर पढ़ा था एंड आई होप इट हेल्प समवन, क्योंकि ये उम्मीद देता है कि कुछ तो बेहतर लिखा है, तभी तो हर बार दिल सब्र करने पर राजी हो जाता है। ऐसा होता है ना यार, कुछ तो एक फेज आते हैं, इट्स अ रोलर कोस्टर, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, तो बस कभी डाउन फेज में ना सबर अपने आप आपके पास आ जाता है। वो इंसान जो जनरली बहुत इंपेशेंट होता है, और आप भी सोचते हो कि भाई ऐसे कैसे इतना ऊपर वाले ने हमें ये सबर दे दिया है, बस कुछ तो बेहतर जरूर लिखा होगा ना, क्योंकि आप सबर कर रहे हो एंड यू डिजर्व इट एंड माइट बी यू वांट टू लिसन दिस फ्रॉम समवेयर। तो बस हमने सुना दिया है और बस यही उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत ही खूबसूरत जाए। तो बस शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Burka, burka. La vieta la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं
1: बोल, कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स, मेरी मेहनत की तूने ऐसी
1: काटी, ऊपर से फोन करके आ रहा है कि साले 17 रुपए।
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना, वो कर देना, कॉरियर कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: देखो वो क्या है ना, थोड़ा क्रेडिट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे और आपको भी मिलना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और मैं बताती हूँ कैसे। पहले कतर ना ज्यादातर पॉपुलर था फॉर अ ट्रांजिट डेस्टिनेशन, लेकिन अब कतर अपने आप में एक पूरी की पूरी तरह ट्रैवल डेस्टिनेशन बनते जा रहा है ना। और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट ना आपको और हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे घर पे हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव ये सारे लोग आते रहते हैं। और भाई इस बात का ना अब प्रूफ भी आ गया है, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर यानी सिर्फ जनवरी से मार्च तक के बीच में 11.3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कतर आए। एंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में ये नंबर्स और भी एक्सेलरेट होने वाले हैं। एंड व्हाई नॉट भाई, मतलब अब गर्मी का ये जो टाइम है ये 2 महीना ही रहेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद तो बहुत अच्छा वाला वेदर हमारे कतर में शुरू ही होने वाला है। एंड वेल ऑन दैट नोट, विजिट कतर का हेलो समर कैंपेन यानी हाला समर सिर्फ कम टू कतर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है दैट स्टे लॉन्गर एक्सपीरियंस मोर, क्योंकि यहाँ पर फैमिली एंटरटेनमेंट है, इंडोर अट्रैक्शंस है, शॉपिंग फेस्टिवल्स है, वाटर पार्क्स है, बीच क्लब्स है और कई होटल्स पर तो 50% ऑफ का ऑफर्स भी चल रहा है। मतलब कतर समर को चैलेंज नहीं अपॉर्चुनिटी बना रहा है। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये भी लगता है दैट वर्ल्ड कप के बाद कतर का फोकस सिर्फ मेगा इवेंट्स पर ही नहीं है, अब एम्फसाइज जो है रिपीट विजिटर्स पे भी है। ठीक है, जो एक बार आए हैं वो दोबारा भी आ जाइए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक सो कतर लीव्स इट्स मैजिक, कि जो यहाँ से विजिट होकर जाता है, एटलीस्ट माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डू से दैट कि यार आफरीन सच कहूँ तो कतर में बहुत सुकून है और जिंदगी में जब भी हमको सुकून चाहिए होगा ना हम कतर दोबारा आएंगे। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्शी इट्स हॉट।
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. A Pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

0: वेल, मुझे सुनने वाले ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मुझे सच बताइए कि भाई आपके बच्चों को किसी चीज से एलर्जी हुई है, या फिर आपने खुद ही ऐसे जजमेंट कर दिया है कि नहीं यार, इसको शायद दूध सूट नहीं कर रहा है, या अंडे सूट नहीं कर रहे हैं, या ये सूट नहीं कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि पेरेंटिंग करते वक्त पहली बार रहती है, बहुत सारे अजम्पशंस हम कर लेते हैं, और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक नई खबर आई है।
1: क्या खबर कदर?
0: देखिए, खबर ऐसी है दैट हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने वर्ल्ड एलर्जी वीक के मौके पर दो नए स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक एलर्जी सर्विसेज लॉन्च किए हैं। देखिए, अब बच्चों के लिए स्किन एलर्जी टेस्ट और फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट अवेलेबल होंगे। स्किन टेस्ट डॉक्टर्स को एक्चुअल एलर्जन जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जिससे अर्ली डायग्नोसिस और बेटर एलर्जी मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। और जो फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट है ना, उनका काम सिर्फ एलर्जी पकड़ना नहीं होता है, बल्कि एलर्जी को रूल आउट करना भी होता है। क्योंकि कई बार ना लोग सालों तक अननेसेसरीली मिल्क, एग्स या कुछ मेडिसिन ना अवॉइड करते हैं, जबकि साइंटिफिकली उनकी जरूरत होती नहीं है। मेडिसिन में ना एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर डायग्नोसिस बाय अजम्पशन, मतलब टेस्ट के बिना सिर्फ गेस वर्क किया और उस वजह से बस रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि नहीं ये नहीं खाना है, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो नई सर्विसेज है जो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन लेकर आई है, ये गेस वर्क को रिप्लेस करेंगी एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस से। और इसका रिजल्ट क्या है कि आप अपने बच्चों को ना बेटर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, अननेसेसरी जो फूड रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है, और एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा जुडिशियसली कर सकते हैं। तो वेल, अगर आपके घर में किसी बच्चे को रिपीटेडली एलर्जी सिम्टम्स अगर होते हैं ना, तो सेल्फ डायग्नोस या गूगल या फिर चैट जीपीटी ये सब बिल्कुल नहीं कीजिए, साइंटिफिक कंफर्मेशन कीजिए। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम एलर्जी नहीं, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और जब ये क्लैरिटी मिलती है ना, तो पेरेंटिंग भी जो है वो थोड़ी और स्ट्रेस फ्री हो जाती है ना कि नहीं? माइक से दिल तक आप शीन के साथ है, आप राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो बचपन में अगर मम्मी को कहते थे ना बोर हो रहा है मम्मी, तो मम्मी यही कहती थी जाओ नीचे जाकर दोस्तों के साथ खेलो। और आज के बच्चे वारे वाह, बोर हो रहा है बस कहने का इन्हें मौका ही कहाँ मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टॉकिंग अबाउट हमारे बच्चे कतर के जो फिलहाल छुट्टियां मना रहे हैं। बस इनकी जस्ट छुट्टियां शुरू ही गई है और उसी चलते कतर का सबसे बड़ा टॉय फेस्टिवल इज बैक दिस समर। वेल मैं बता दूं ये 1st of July से लेकर 31st of July तक रहने वाला है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, दैट इज DECC। संडे टू वेडनेसडे इसकी जो टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है। और अगर वीकेंड की टाइमिंग्स में बताऊं जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और टिकट्स बिल्कुल 50 कतरी रियाल। अगर देखा चाहे तो यार हम बच्चों को कितनी ही बार ये समर वेकेशन में हम मॉल्स लेकर जाते हैं, प्ले जोन लेकर जाते हैं, और 50 क्या वहां पर तो 200-250 ऐसे यूं खर्च होते हैं। आप सोचिए सिर्फ 50 कतरी रियाल इनकी एंट्री टिकट है और वीकेंड पे चलिए 70 है, लेकिन उसमें ये इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। वहां पर इतने सारे ब्रांड्स हैं टॉयज के, लाइव स्टेज शोज है, कैरेक्टर्स मीट एंड ग्रीट है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस है, शॉपिंग है, कंपटीशन है और बहुत सारे थीम जोन्स। सो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। मेरा दिल तो हमेशा से बच्चा है और ऐसी जगह पर ना मैं अपने आप को भूल जाती हूँ और वो छोटी वाली आफरीन बन जाती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: Qatar ka number one radio station. 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: 96.
1: It's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline?
3: Yeah. Hi, Anjali. Mirchi Helpline. Ball.
2: You know, I love twinning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
3: Hey, to galat thodi bol raha hai. लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।

0: सगळे हलकट हात.
1: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

देखो, आप अगर वेकेशंस पर कतर से कहीं नहीं जा रहे हो तो डोंट यू वरी, आपको बिल्कुल भी कोई फोमो नहीं होगा क्योंकि कतर में है ही इतनी सारी चीजें करने के लिए। देखो बॉस, ये कतर है, सबका ख्याल रखता है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सो देखिए, विजिट कतर लेकर आ गया है हाला समर 2026, जो 1st of July से लेकर 30th of September तक पूरे कतर को एक जायंट फैमिली प्लेग्राउंड में बदलने वाला है। यस, अब भले ही वो मॉल ऑफ कतर हो, दोहा फेस्टिवल सिटी, प्लेस वेंडम, विलाजियो, सिटी सेंटर, लैंडमार्क, दोहा मॉल, हयात प्लाजा, अल हजम, गिवान आइलैंड, वेस्ट वॉक, यू नेम इट, हर जगह आपको मिलने वाले हैं फ्री फैमिली शोज, लाइव एंटरटेनमेंट, मैस्कॉट मीट एंड ग्रीट्स, फन चैलेंजेस, पजल गेम्स एंड क्या नहीं भाई। देखिए इतना ही नहीं, इनफैक्ट अगस्त में तो शुरू होने वाला है हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल। अगर आप पार्टिसिपेटिंग डेस्टिनेशंस पर 200 कतरी रियाल से ज्यादा स्पेंड करते हैं ना, तो रिसीट कैंपेन, जो रिसीट मिलता है उस कैंपेन बूथ पर आप रिडीम कीजिए और रैफल एंट्री पाइए। आपके पास मौका होगा एक ब्रांड न्यू कार और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। देखिए मुझे तो लगता है ना कि इस बार समर सिर्फ एसी के अंदर बैठने का सीजन नहीं है बॉस, बाहर निकलो हमारे कतर में और मॉल में जाइए। मॉल के एसी के पूरे कंफर्ट में आपको पूरी तरह से एंटरटेनमेंट मिलने वाला है और वो भी एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na virpa la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगा में पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारेगा में पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती हूं।
2: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारेगा में पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हो, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: देखो मैं जानती हूँ ऑप्शंस कम है, लेकिन अपने पास सलूशन है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और बात करते हैं OTT कंटेंट के बारे में, जहां वी नो कि ज्यादा कंटेंट जो है इट्स मोर एडल्ट्रेटिंग, वायलेंस है, थ्रिलर, क्राइम एंड ऑल दीज थिंग्स जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लेकिन आफरीन है तो टेंशन नहीं बॉस, लेकर आई हूँ नए कुछ ऐसी चीजें जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो।
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: देखो नया मेरे लिस्ट में ये है, ग्राम चिकित्सालय सीजन 2। सीजन 1 भी आ चुका था। इट इज बेस्ड ऑन अ डॉक्टर हु सेट अप इन अ रूरल बैकग्राउंड। बिल्कुल थोड़ा सा आपको पंचायत की झलक इसमें नजर आएगी, जो बेसिक थीम है उसी की तरह है, लेकिन थोड़ी स्टोरी थोड़ी एम्पैथिक जाती है, अच्छी स्टोरी है इसकी, एक्टर बहुत अच्छा है। बिकॉज इसमें आपको मेन प्रोटैगनिस्ट के किरदार में जो है वो अमोल पराशर नजर आते हैं, एंड क्योंकि ये TVF की ही पेशकश है, सो यू आर गोना ड्रॉ क्वाइट सम कंपैरिजन विद सीजन पंचायत। ठीक है, पंचायत किसको नहीं पसंद है, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक ग्राम पंचायत एज वेल। अमेज़न प्राइम पर ये स्ट्रीम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव फॉर यू अगेन स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव, दैट इज परफेक्ट फैमिली सीजन 2। अब इसका भी स्टारकास्ट बहुत ही बढ़िया है, मनोज पावा, सीमा पावा, नेहा धूपिया, गुलशन देविया, ये सारे कुछ नजर आएंगे इन दिस साइकोलॉजिकल कॉमेडी ड्रामा। सो अनदर सीजन, अनदर वेब सीरीज जो फैमिली के साथ आप देख सकते हो। कमिंग अप नेक्स्ट, जो आकर काफी टाइम हो चुका है, दैट इज गुल्लक। भाई गुल्लक विल ऑलवेज बी नंबर 1 इन माई लिस्ट व्हेन इट कम्स टू फैमिली ड्रामा। नथिंग बेटर देन दिस, एंड आई डोंट नो इफ एनीथिंग विल कम बेटर देन दिस। सीजन 5 पर आ गया दोस्त, एंड दिस इज द ओनली वेब सीरीज इन इंडिया जो सक्सेसफुली सीजन 5 पर आकर भी सुपर डुपर हिट है। 7 सीजन का ये एपिसोड है, सोनी लिव पर आया है। 7 एपिसोड्स का ये सीजन है सोनी लिव पर जो आया है, एंड लेट मी टेल यू यार, 7th एपिसोड इज सो हार्ट वार्मिंग यार। प्लीज जाकर गुल्लक देखो, नहीं देखा है तो सीजन 1 से देखो, एंड आई एम श्योर यू विल कम एंड यू आर गोना थैंक मी फॉर दिस। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: ओह हेलो हेलो मिलेनियल्स, ये जेन Z की नई ट्रैवल लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हो आप? अरे ये जेन Z है, ये सब जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो कुछ नई चीज के लिए नए शब्द ये लेकर आते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और हमारी जो जेन Z है ये ट्रैवल के लिए बहुत सारे नए वोकैबुलरी लेकर आए हैं, क्योंकि ट्रैवल का सीजन है। सो आई थॉट यू शुड नो। सबसे पहले तो वाइकेशन, स्टेकेशन तक तो हम समझते थे, लेकिन ये वाइकेशन क्या है? मतलब पहले मूड डिसाइड होता है, डेस्टिनेशन बाद में। अगर सुकून चाहिए तो माउंटेन्स, एनर्जी चाहिए तो सिटी, इसे ये वैकेशन कहते हैं। नाउ मिरर ट्रिप वैकेशन, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी जैसी, जो आप हो वही आपका ट्रिप होगा, ठीक है। नाउ आई हैव अनदर वर्ड फॉर यू, दैट इज डी इन्फ्लुएंस्ड ट्रिप। हाँ, इन्फ्लुएंसर ट्रिप समझ में आता है। डी इन्फ्लुएंस्ड ट्रैवल क्या होता है? सोशल मीडिया पे वायरल जगह नहीं, बस वो डेस्टिनेशन जहां दिल जाना चाहता है। मतलब बस किसी से इन्फ्लुएंस ना होकर अपना डिसीजन लेना, इसे चलिए इसे भी एक वर्ड दे दिया है। अब एक और वर्ड है मेरे पास, एंटी आइटिनरी ट्रिप। नो मिनट टू मिनट प्लानिंग, बस निकल पड़ो और देखते जाओ दिन कहाँ ले जाता है आपको। क्योंकि हम मिलेनियल्स है ना, वी प्रेफर मोर ऑफ फोकस्ड प्लानिंग एंड ट्रैवल इन द ट्रैवल। जैसे ये 9 बजे नाश्ता करना है, फिर 11 बजे म्यूजियम जाना है, लेकिन नहीं भाई, जेन Z है, दे गो विद द फ्लो। इसे एंटी आइटिनरी ट्रिप कहते हैं। और इसी में कभी कभी हो जाता है एक कैनन इवेंट, ये भी एक ट्रैवल वोकैबुलरी बाय द वे, एक ऐसा अनप्लान्ड मोमेंट जो पूरी ट्रिप का हाईलाइट बन जाता है। कभी रोड साइड चाय, तो कभी किसी स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन, इसे कहते हैं। अगर आपके ट्रिप में कोई ऐसा हाईलाइट मोमेंट आएगा ना, तो आप ट्रैवल से आने के बाद उसे इस तरह से कहना कि आई हैव दिस कैनन इवेंट ऑन माई ट्रिप। देखिए कितने सारे मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स बताए हैं, इसके अलावा और भी है, धीरे धीरे से बताते जाऊंगी यहाँ पर जेन Z की लैंग्वेज विद मी वन एंड ओनली माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: 89.6, 89.6.
5: Mirchi. Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं.
6: Office के toilet में toilet paper white नहीं, yellow लगाओ. प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: देखो चॉकलेट्स खरीद लिए, खजूर खरीद लिए, परफ्यूम्स भी खरीद लिए हैं और पैकिंग भी लगभग हो ही गई है, जाने की पूरी तैयारी है ना, तो फिर यार ये भी एक तैयारी कर लो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और इंडिया जाने की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल अपडेट आई है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। देखिए इंडिया ने एयर सुविधा 2.0 रीलॉन्च किया है। अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना बिल्कुल मैंडेटरी किया गया है। वेल ये स्टेप अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट हुए एबोला वायरस आउटब्रेक के बाद प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग को और स्ट्रांग बनाने के लिए किया गया है। देखिए हम सबसे बड़ी गलती ना यही करते हैं कि एयरपोर्ट पहुंचकर फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जैसे ना काफी डिले हो जाती है इमिग्रेशन के लिए और अननेसेसरी ना स्ट्रेस हो जाता है। देखिए स्मार्ट ट्रैवलर हैक तो यही है ना, दैट फ्लाइट से पहले ही या वेब चेक इन के टाइम पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। अथॉरिटीज के मुताबिक इसे अराइवल से 24 आवर्स पहले तक सबमिट किया जा सकता है। देखिए पासपोर्ट डिटेल्स, फ्लाइट नंबर और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन रेडी रखिए ताकि आपका प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहे और आप ना घर पर पहुंचने की एक बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, अपनों से मिलने की बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट, तो वो सारी चीज में ना बिल्कुल डीले नहीं हो। उसके बाद क्या, बस आपके वेकेशंस एंजॉय कीजिएगा। और हाँ जी, अब लौटते वक्त ना खाली हाथ जरूर बिल्कुल नहीं आना, कुछ मिठाई उठाई अपने शहर की स्पेशलिटी मेरे लिए जरूर लेके आइए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: security helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट
3: 89.6 89.6.
1: शिमला या मनाली चले जाओ.
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट 89.6

देखो साल का वो टाइम चल रहा है कतर में जब कतर धीरे धीरे से खाली होते जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर में समर के वेकेशंस शुरू होने वाले हैं, अब बस मेरे ख्याल में ये आखिरी महीना है फॉर ऑल द किड्स आउट देयर, और उसके बाद क्या है, आहिस्ते आहिस्ते सारे लोग वेकेशंस मनाने जाएंगे, कोई इंडिया कोई पाकिस्तान। जब होम टाउन जाते हैं ना तब थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं इस वक्त पर, क्योंकि क्या है कि छुट्टियाँ लंबी मिलती हैं। एंड एट दिस टाइम जब आपके ट्रैवल में आपको और थोड़ी सी सहूलियत मिले तो कितनी अच्छी बात होगी ना। यस, तो जैसे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप जब जाने वाले हो तब वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रोलर सर्विस फॉर चिल्ड्रन ये शुरू हो चुकी है। देखिए 300 तकरीबन स्ट्रोलर्स अवेलेबल है, और इसके लिए पता है मजे की बात कि कोई भी प्री बुकिंग और रजिस्ट्रेशन कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस सीधा पैसेंजर्स कैन पिक अप द स्ट्रोलर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रोलर नेस्ट लोकेटेड अक्रॉस द टर्मिनल। अब ये जो नेस्ट लोकेशंस है स्ट्रोलर के, ये कॉन्कोर्स ए बी सी डी ई हर

0: आपको ये नजर आएगी। ये कितनी ज्यादा बून है ये तब पता चलता है जब आप कहीं ट्रैवल करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स विद इन द एयरपोर्ट भी काफी वॉकिंग रहती है और एयरपोर्ट की जो टाइम्स होते हैं फ्लाइट्स के, कभी कभार थोड़े से ऑब्जर्व हो जाते हैं कि एकदम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है जिसकी वजह से बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं अपनी नींद की वजह से। सो ये स्ट्रोलर ऐसे वक्त में बहुत ही काम का आएगा। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोलो कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
3: अभी कॉल करें 3100-0813। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए, घर को घर दीवारें नहीं बनाती, लोग बनाते हैं, ये तो बखूबी जानते हैं हम। और घर में बहुत से लोगों का आना जाना रहता है ना, लेकिन इनमें से अपने कौन होते हैं? शायद इसी सवाल पर एक खूबसूरत सा जवाब गुलजार साहब देते हैं। एक शायरी नहीं है, बस मेरी डायरी से चंद लाइंस है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
0: वो कुछ ऐसी है, दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक कर आएगा समझो वही अपना है। क्या खूबसूरत ख्याल है गुलजार साहब का, क्या बात है, और कितनी गहरी बात है ना ये। झुकना यहाँ सिर्फ दरवाजे से गुजरना नहीं, अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी आना छोड़कर किसी रिश्ते में आना जो सिर्फ अपनी शर्तों पर चले वो मेहमान ही हो सकता है, लेकिन जो रिश्ते के लिए थोड़ा सा झुक जाए, समझ लीजिए वही आपका अपना है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, आपकी अपनी ऑफ कोर्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद

0: IB payments ka wah tarika. With IB, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IB app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IB, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी देखकर रिलैक्स करते हैं, कुछ लोगों को रोमांटिक मूवीज का शौक होता है, तो एक और कैटेगरी है जिन्हें मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस में अपना एंटरटेनमेंट नजर आता है। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो Z5 पर आई ब्राउन आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अप टू सिंपली आफ्टर इनको राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और करिश्मा कपूर हमारी 90s की खूबसूरत एक्ट्रेस, शी इज बैक, लेकिन इस बार ना नॉट इन अ ग्लैमरस अवतार, दिस टाइम नॉट इवन इन अ किसी लाइट हार्टेड रोल। She steps into the shoes of Rita Brown, a tough detective investigating a high-profile murder case in the mysterious mylanes of Kolkata. देखिए ये सिर्फ एक murder mystery नहीं है, Brown is something more than that. हर character अपने secrets लेकर चल रहा होता है, हर clue एक नई layer खोलता है और हर episode आपको एक intellectual roller coaster पर ले जाता है. Well, this series Brown is directed by Abhinay Deo. The series is beautiful. It blends suspense, human psychology and social commentary. Karishma Kapoor yahan par delivers a compelling performance supported brilliantly by Surya Sharma and Jishu Sen Gupta. Dekhiye aapka idea of entertainment if it's not just finding the killer but understanding the human mind behind the crime. Aise kuch log hote hain na jo ye crime thrillers ko bahut seriously lete, then definitely Brown on Z5 deserves a spot on your binge watch radar. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट
4: 89.6।
1: ओ सजा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

ये बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना, शरारत, शाश्वत सचदेव, मधुवंती बागजी और जैस्मिन सैंटस की आवाज में। और अब मैं आ चुकी हूँ, यानी कि मिर्ची ईशा, आपको सुनाने इस हफ्ते के इवेंट, शोज, एग्जीबिशन, सब कुछ सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। और इस तपती गर्मी में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या गुड ऑप्शंस हैं, क्योंकि इस बार कतर में होने वाले हैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स। अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है समर वेकेशन की, कि कहीं आप जा नहीं रहे हैं, कहीं आप कतर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको सारा जो एक पैकेज है ना, फुल पैकेज आपको बना के दूंगी यही, यानी कि मिर्ची ईशा के शो पे। तो करना क्या है, मेरे साथ बने रहना, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virva la murga. Mirci, murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके?
2: 17.5 रुपए
3: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एड्रेस दे अपना, वो कर देना, तू कॉल कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची में आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन, It's hot. It's hot.

0: हम औरतें ना बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं। अगर पति से लड़ लेती हैं ना तो बस एक शॉपिंग करके अपना मन बहला लेती हैं। जी हाँ, ये न्यूज उन्हीं के लिए है जिनकी अभी रिसेंटली अपने पति से लड़ाई हुई है और वो चाह रही है कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करना अपनी लाइफ में। तो आपके लिए दोहा समर ट्रेड फेयर लेके आई हूँ जो हो रहा है आपके DECC में, एंड ये 10 AM से लेके 10 PM तक है। फ्राइडेज 3 PM टू 10 PM तक है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ July 4 तक ही है, यानी कि 4th of July को ये लास्ट डेट है। उससे पहले पहले अगर पति से लड़ाई हो गई है या हो चुकी है या होने वाली है तो आप अपना ठिकाना याद रखिए कि कहाँ जाना है और क्या खर्चा करना है। एंड इसके प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है दैट इज टोटली यूनिक, क्योंकि एक छत के नीचे आपको ब्रांडेड सामान मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल जाएंगे, डील्स मिल जाएंगे, उसके अलावा होम एसेंशियल्स, गिफ्ट्स, परफ्यूम्स, क्या चीजें हैं जो आप बोलोगे वो सब मिल जाएगा आपको अंडर वन रूफ। तो बस करना क्या है, इस वीकेंड जा सकते हैं। एंड हाँ, एक मौका आपके पति को भी दे दीजिए कि पैसे कटेंगे अगर आप लड़े मुझसे। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

साल का वो महीना जब बच्चे इस महीने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, और करते भी क्यों हैं? क्योंकि कतर का सबसे बड़ा टॉय फेस्टिवल होता है इस महीने। और जब बात हो कतर टॉय फेस्टिवल की, तो भाई वो हमेशा ग्रैंड ही होता है। ये अपने बच्चों को रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये होने जा रहा है आपके कतर में शुरू। जी हाँ, शुरू ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड आप इस वीकेंड अपना प्लानिंग कर सकते हैं, जा सकते हैं। मात्र 50 कतरी रियाल में एंट्री मिलेगी। उसके अलावा DECC में ये होने जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है ये। आई ऑलवेज अटेंड, एंड ऑफकोर्स आप भी अगर कतर में कुछ सालों से रह रहे हैं तो आप टॉय फेस्टिवल तो जरूर गए होंगे। चाहे आपका बच्चा हो या आप यंग हो, जरूर गए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंजॉयबल प्लेस है जहाँ बड़े चाहे छोटे किसी के लिए भी आपको कुछ भी मिल जाएगा, मतलब सब एंजॉय कर लेंगे। एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत सारी न्यू एडिशंस भी इसमें हुई हैं। तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, विनी द पू, द फ्लिंटस्टोन्स, द पैकमैन, ये सब ऐड हुए हैं। अगर आप इस एक्सपीरियंस को और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो जाके विजिट करिए। आई नो आप जाएंगे, अगले हफ्ते भी जा सकते हैं, क्योंकि ये 31 जुलाई तक ही है। आप एंजॉय कर सकते हैं इस समर वेकेशन। अगर कहीं नहीं रहे हैं, बच्चों को लेके जाइए इस गर्मियां, और एंजॉय करिए खुद भी और बच्चों को भी एंजॉय करवाइए। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: क्रेजी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: गर्मियों की सबसे खास बात ये है कि गर्मियों में आते हैं खूब सारे मैंगो और आते हैं तरह तरह के मीठे मैंगो और मैं बात कर रही हूँ यहाँ मैंगो फेस्टिवल की। थर्ड एडिशन ऑफ द पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल होने जा रहा है आपके दोहा कतर में। इसको हम्बा एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाते हैं। जुलाई 9 से ये शुरू हो रहा है ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूक वाकिफ में। मिस करने वाला मौका नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही आपके पास आए हैं। 18 जुलाई को ये वाइंड अप हो जाएगा यहाँ से। तो आपको करना क्या है, इस वीकेंड टाइम निकाल के जाना है और बहुत सारे मैंगो लेके आने हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैरायटी आपको मिलने वाली है पाकिस्तान की डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आई हुई, उसमें इंक्लूडेड है चौंसा, अनवर अतौल, सिंदरी एंड ऑल्सो दशहरी। तो ये सब वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए मजेदार वीकेंड जाएगा, इंजॉय कर सकते हैं। मैंगो के अलावा आप मैंगो से बनी हुई बहुत सारी क्यूजींस भी इंजॉय कर सकते हैं। उसमें जैसे आप पानी पूरी कह लीजिए या डोसा कह लीजिए, मैंगो मैंगो बर्गर, मैंगो चिकन, सब कुछ आपको वहां मिलेगा अंडर वन रूफ। तो करना क्या है, इस वीकेंड जाना है, इंजॉय करना है। टाइमिंग आपको मैं बता रही हूँ 4 PM से 10 PM तक रहेगा थ्रू आउट द ड्यूरेशन। मैंगो एक ऐसी चीज है ना जो खाने से ना आपके फेस पे ऐसे खुशी आ जाती है ना, तो आपको वहां बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल डेलिकेसीज भी मिलेंगी। एंड अगर आप जाना चाहते हैं जरूर जाइए अपनी फैमिली के साथ, मनाइए मैंगो वीकेंड इस वीकेंड को और इंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

Hey Qatar, अगर आपके पास भी वो टैलेंट है, अगर आपके पास भी वो एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिस जो आपको सबसे अलग करता है, तो आपके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म लेके आई जहाँ आपको मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। जी हाँ, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर उल्टा पुल्टा कुछ काम करने की इच्छा हो, या स्टैंड अप कॉमेडियन करने की बात हो, मिमिक्री करने की हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको अलग बनाती है सबसे, अगर आप में वैसा कुछ टैलेंट है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आई हूँ। मैं जी आपको दे रहा है एक ऐसा मौका जहाँ पे कतर्स गॉट टैलेंट में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते। सारी डिटेल्स आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, आप हमें फॉलो करिए, यानी कि मिर्ची पान कतर को फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे आपको मिलने वाली है वो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कतर्स गॉट टैलेंट, और आप अपडेटेड रहेंगे। और उसके अलावा आपको मिलेगी ढेरों सारी इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बस अपने टैलेंट को ज्यादा छुपा के रखिए मत, क्योंकि समय आ चुका है अपने टैलेंट को दिखाने का और बताने का लोगों को, आई एम द वन, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो बस रेडी हो जाइए और सुनते रहिए हमें, यानी कि 89.6 मिर्ची वन को। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों और बहुत मज़ेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं इसी ही जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है एंड इट इज 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM to 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज्ड, सो थर्सडे 9 AM to 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM to 7 PM. तो जाना कहाँ है 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है बच्चों के लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड में आपका मजेदार हो जाएगा, अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & Hot.

कतर में रहते हुए अगर आपने ये एक लग्जूरियस एग्जीबिशन नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। मैं बात कर रही हूँ तीब अल हजम 13th एडिशन की। जी हाँ, जो 4 जुलाई को एंड हो जाएगा, इस वीकेंड होने वाला है एंड, उससे पहले आपको जरूर जाना चाहिए। जाते ही जो आपको तरह तरह की खुशबुएं आएंगी और वो लोग जो एक ब्रांड के लिए लंबी लंबी लाइनों में कतार में खड़े हैं एक ब्रांड को खरीदने के लिए, वो जज्बा, जो इंथुजियाज है, जो जील है लोगों में उस पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने का, उस पर्टिकुलर खुशबू को अपने पास आमंत्रित करने का जो एक जज्बा है ना लोगों में, वो एक अलग लेवल है भाई। परफ्यूम के साथ प्यार यहाँ पे देखने को मिलता है। मेरी मानिए, जाइएगा जरूर, इंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड, और वहाँ पे खाने के भी ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसके अलावा परफ्यूम एक ऐसी चीज़ होती है ना जो लगाने के बाद आप उसको हमेशा जहन में रखते हैं, हमेशा आपको याद रहता है कि मैं अपनी लाइफ के उस दौर में वो परफ्यूम लगाती थी और वो खुशबू मुझे आज अगर मिल जाए तो मेरे को वो दौर अपना जिंदगी का याद आ जाएगा। तो बस ये एक ऐसी परफ्यूम की खासियत है। तो लाइए परफ्यूम खूब सारे और इस वीकेंड एंजॉय करिए परफ्यूम्स के साथ, और सुनते रहिए मुझे यानी कि मिस ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इज हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
0: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, बाकी सब बातें बाद में, लेकिन ये लाइन जो है ना ये बहुत ज्यादा दिल को लगती है। समय सच्ची में बहुत बलवान होता है। इसीलिए शक्तिशाली होता है क्योंकि समय हमें सिखाता है किस तरीके से हर एक सिचुएशन से हमें उभरना है, हर एक सिचुएशन में किस तरीके से हमको अपने आप को हील करना है। ये सब समय रहते ही हमें समझ में आता है। बाकी समय हो चुका है हमारा भी जाने का, बहुत समय समय कर लिया। आप लोगों को बताऊंगी वो सारे इवेंट्स एग्जीबिशंस अगले हफ्ते की, और इस हफ्ते सारे वीकेंड्स में जो भी प्लानिंग मैंने आपको दी है जाके इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया हो, और अगले वीकेंड आपको मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम पे। तो तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन 89.6 मिर्ची वन एयरपोर्ट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डर। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: यार सच कहूं बचपन के दिन ना बहुत याद आते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं तो हमारे पास भाई बहनों से लड़ने के लिए क्या कमाल रीजन होते थे। कूलर पे पानी मम्मा यही भरेगा, ये आखिरी में सोके उठा था। मम्मी पानी की बोतल मैंने खाली नहीं की थी, थोड़ा सा पानी मैंने छोड़ा था, इसने आखिरी में पूरा किया, पानी तो ऐसे ही भरना है, बस घर पे घमासान युद्ध जो है उसके बाद शुरू। लेकिन आज के बच्चों के पास ऐसे कोई रीजन ही नहीं है। सच कह रही हूँ, बहुत सॉरी फील होता है मुझे इनके लिए, लेकिन इनके पास अपने अलग रीजन है। जब मैं ये आज के सिनेरियो को देखती हूँ ना कि मम्मी टिफिन जो है आपने इसका अच्छा डाला, मेरा कम डाला, मम्मा इसने इतना स्क्रीन टाइम लिया, मैंने तो लिया ही नहीं, मम्मा इसने होमवर्क ना किया, मैंने तो पूरा कर लिया, फिर भी टीवी देख रहा है भाई। मतलब भाई बहन अगर दो घर में एक साथ है तो कहीं ना कहीं लड़ने का रीजन जो है ढूंढने लेंगे। लेकिन ये वॉन्ट जो है ना यार, काफी कमाल होता है, काफी खूबसूरत होता है। जितना लड़ना झगड़ना घर पे होता है, बाहर कोई एक शब्द बोल के तो देखे, उसके बाद देखो सामने वाले की धुलाई जो है ये करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो बस आज मैं अपने कजन से बात करते हुए इन दिनों को जब मैं पूरी तरह से रिवाइज कर रही थी, एक बार फिर से इनके बारे में सोच रही थी, तो लगा कि जिंदगी में ना रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। तो इतना ही कहना चाहूंगी, आज सुबह सुबह से पहले की हफ्ते भर की खास बातें मैं आपके बीच पेश करूं। लाइफ में ऐसा कोई खास कजन है, भाई बहन है, तो भाई डेफिनेटली उनको एक फोन करना बनता है एंड पुरानी बातों में एक बार फिर से लड़ना भी बनता है, करके देखें, काफी मजा आता है। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोलो कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
3: भारत सरकार का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार देखो एक बात तो तय कि घर के हर एक सदस्य का इंतजाम हो ही गया।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बात मुझे बताना कि घर में पापा जो हैं वो सबसे ज्यादा खुश कब हुआ करते थे? जब उन्हें बस यही पता हो कि भाई मम्मी खुश है। मम्मी तब खुश होती थी जब हम जो हैं पूरी तरह से ऑक्यूपाइड होते थे। तो चलिए आपके घर में ऐसा कोई सिनेरियो उस वक्त हम क्रिएट कर ही दें और ये होगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पर, जहां पर एक तरफ आपको पता है कि शॉपिंग की बहार लगी हुई है विद दोहा शॉपिंग एंड ट्रेड एग्जीबिशन, एंड वहीं दूसरी तरफ कतर टॉय फेस्टिवल ने दस्तक दे दी हो। इन दोनों सिनेरियो में जब मम्मी एंड बच्चे पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रहेंगे, मम्मी शॉपिंग में, बच्चे खेलकूद में, तो पापा की जिंदगी में खुशहाली ना आए तो फिर क्या ही आए। तो चलिए जी, इस बार आपके वीकेंड को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड स्पेशल बनाने की तैयारी हमने कर ही ली है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हला समर, समर को हेलो बोलने का टाइम आ गया है एंड कतर वेकेशन मोड को ऑन करने का वक्त भी आ ही गया। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कह रही हूँ, ये ना नाइंसाफी है एंड कड़क नाइंसाफी है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. मुझे एक बात बताना, बचपन के दिनों में कभी अपने पापा, चाचा, ताऊ, दादा किसी को भी सनस्क्रीन लगाते हुए देखा है? भाई साहब 32 रुपए के साबुन से वो नहाया करते थे एंड उसके बाद भी चाहे कितनी भी धूप में ये क्यों ना निकल जाए, कभी इनकी स्किन टैन नहीं हुई। मतलब लाल जरूर होती थी लेकिन एक बार फिर से 32 रुपए के साबुन से मुंह धोके आते थे एंड स्किन जो इनकी चमकने लगती थी। आज की डेट में हम 3200 का सनस्क्रीन भी क्यों ना लगाएं? भाई हम लड़कियों की स्किन 5 मिनट में बगैर इसके ऐसे टैन होती है कि इसे साफ होने में अगले 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, आज के डेट में ये जो मेन है ना, ये काफी बदल चुके हैं। छुप छुप के चोरी चोरी हमारा ये 3200 का सनस्क्रीन ऐसे लगाते हैं अपनी शक्ल में जैसे कोई 32 रुपए का साबुन हो। रियलाइज किया आपने? जरा देखें आज के डेट में सूरज चाचू क्या ही कोहराम मचा रहे हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update.
0: Well, today's maximum temperature is going to be somewhere around 47. Minimum is going to be around 35. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को fully hydrated रखें और हाँ, साथ ही वो जो sunscreen है वो आपका best friend होना चाहिए, बिल्कुल अंशु की तरह। Stay tuned to my team, बंदी का नाम अंशु। Enjoy.
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100 0813.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
6: Qatar ka number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार सच कह रही हूँ, गर्मी के दिनों में ना ये दोनों ही चीजें काफी मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु,
0: पहली बाहर निकलना और दूसरी पार्किंग ढूंढना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त लगता है कि ओल्ड दोहा पोर्ट ने दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे लिए निकाल ही दिया है। वेल, इस समर ओल्ड दोहा पोर्ट लेकर आए हैं एंटरटेनिंग एक्टिविटीज की पूरी सीरीज, जो काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस देने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार है। एंड ये चलेंगे 15th ऑफ अक्टूबर तक। तो अगर आपको लगता है इवनिंग में आउटिंग या फैमिली टाइम या दोस्तों के साथ चिल करने का आपको प्लान बनाना है, तो बिल्कुल ओल्ड दोहा पोर्ट आप 101% पहुंच ही सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो मिर्ची की पलटन जो है पूरी तरह से आप तक पहुंचने के लिए तैयार। खाने पीने का इंतजाम जो है वो बस आप कर लें। लेकिन अगर पार्किंग की बात करें तो मीना डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सेस अब डेली दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्हीकल्स के लिए ओपन रहेगा। मतलब अब पार्किंग का ये जो टेंशन है ये जिंदगी में जरा कम हुआ। एंड सबसे खास बात ये है, अगर मैं वॉले पार्किंग की बात करूं तो अब रेगुलर रेट्स की आधी प्राइस में आप पार्क कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप मिनिमम स्पेंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वॉले पार्किंग आपको मिल ही जाएगी। बढ़िया जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सारे के सारे न्यू एक्सपीरियंसेस ओल्ड दोहा पोर्ट में मिलेंगे। जाइए इस गर्मी के दिनों में, वो ठंडी का मजा जो है उठा ही लीजिए। कलेजे की ठंड, उसी की बात कर रही हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: चले। मैच ये हेल्पलाइन बोल।
1: यू नो आई लव विनिंग, पर मेरा BF मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
0: तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. अगर आपकी जिंदगी में यही सवाल है तो बस इसका हल बताने के लिए तो मैं आई हूँ। भाई साहब इतना समझ जाओ, हाला कतर के चलते आपकी जिंदगी में अगर कुछ हाई हेलो बोलने वाला है तो वो है एंटरटेनमेंट, एंड बाय बाय अगर कुछ बोलने वाला है तो वो है बोरियत। वैसे मेरे आने से ये काम तो आपकी लाइफ में हो ही जाता है, लेकिन जब अंशु नहीं तो क्या भैया, जाओ कतर के वेंडर्स एक ही सवाल पूछते हैं कि कहाँ जाए क्या, ये पूछने के लिए कतर के इतने डिजाइनर एंड खूबसूरत मॉल हमने तुम्हारे लिए बनाए। जाइए यार, अच्छी खासी शॉपिंग कराइए, समर का टाइम है, वेकेशन का टाइम है, एंड इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि कतर टॉय फेस्टिवल के एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो कतर के ढेर सारे मॉल्स में आपको उसके एक्टिवेशंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से बच्चे जो है वो खुश हो ही जाएंगे, बीवी जो है शॉपिंग में फिर से मशगूल हो ही जाएगी, एंड फायदे का सौदा दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा। जाओ घूम फिर के आओ, एंजॉय बंदी का नाम।

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga. Milci, murga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार देखो, मजा तो तब आए ना जब इंसान को माहौल भी वैसा मिले।
1: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. देखो यार, फुटबॉल देखने का मजा तब और बढ़ जाता है जब मैच के साथ एटमॉस्फेयर भी वर्ल्ड कप वाला हो, है ना? और अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपके अंदर फीफा फीवर कूट कूट के भरा हुआ है तो इतना समझ जाएं, लुसेल का फैन जोन सिर्फ लाइव मैच स्क्रीनिंग तक लिमिटेड नहीं है। बल्कि जहां पे एक तरफ जायंट स्क्रीन्स पर बिग मैच का एक्शन है, वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे लाइव एंटरटेनिंग गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, फूड स्टॉल्स हैं, फन फिल्ड इवेंट्स हैं जो आप किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। बल्कि इतना ही कहना चाहूंगी, साल 2022 की यादों को एक बार फिर से अगर मिलकर कहीं जीना है तो सीधा कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है लुसेल फैन जोन। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की सबसे खास बात यह है कि आप कभी भी इसे अकेले बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते जब तक चार पांच लोग ना हो या चार पांच ग्रुप्स ना हो, या जो आपकी टीम की अपोजिट टीम को सपोर्ट करें एंड कहीं ना कहीं आपको टीज करें। तभी तो असल कंपेटिटिव स्पिरिट जो है ना मैदान पे नहीं इस तरफ आता है। हमारे बीच क्या कहती पब्लिक? तो फटाफट से इस वक्त लुसेल फैन जोन जाने की तैयारी मैंने तो कर रखी है। आपका क्या प्लान है ये जरूर बताना। अगर आ रहे हो तो खाने पीने का थोड़ा सामान ज्यादा लेके आना, बाकी तो वहां से खरीद लेंगे आप, हम खाएंगे। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चांटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चांटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

जी छुट्टी आई है, आई है छुट्टी, आई है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। टिकट्स तो बुक हो ही चुकी होंगी, पैकिंग शैकिंग भी कंप्लीट हो ही गई होगी एंड अब जो है ट्रैवल की बारी है, क्योंकि फाइनली छुट्टी वाले दिन यानी कि वेकेशन मोड हमारी जिंदगी में आ ही चुका है। एंड इस वक्त अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बात आपको बहुत ध्यान देनी है, दैट एयर सुविधा 2.0 मैंडेटरी तौर पर वापस आ चुका है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि इंडिया फ्लाई करने से पहले इस वक्त ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंशु फिर से क्यों, भाई ये स्टेप लिया गया है एक प्रिकॉशन के तौर पर, स्पेशली अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में रिपोर्टेड इबोला केसेस को देखते हुए। ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दी, सेफ्टी फर्स्ट एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। एंड अच्छी बात यह है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, फॉर्म आप अराइवल से 24 आवर्स पहले आसानी से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि वेब चिकन के साथ ही इसे कंप्लीट कर लीजिए, एयरपोर्ट पर या इमिग्रेशन के टाइम पर अननेसेसरी डिले से आप बच ही जाएंगे। तो पैकिंग लिस्ट में जहां पे एक तरफ पासपोर्ट है, बोर्डिंग पास है, वहीं दूसरी तरफ एयर सुविधा फॉर्म भी 101% ऐड करना है। तो बस घर जा रहे हो, मम्मी पापा को प्रणाम कहना, ताई जी को भी प्रणाम कहना, छोटों को खूब सारा प्यार। एंड सुनो, लौटते वक्त वो मिठाई का डब्बा अंशु का, हाँ मम्मी से कह देना वो पैक कर देंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जॉन अब्राहम आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
2: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार. एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood बोल्डा, Bollywood, Bollywood, Bollywood बोल्डा. Only on मिर्ची, it's hot.
3: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: शायद इसी का नाम तो जिंदगी है।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लगता। रास्ते नजर आते हैं लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती। दिल दुआ करता है लेकिन जवाब मिलने में वक्त लगता है। लेकिन शायद इसी का नाम तो जिंदगी है ना। आज अगर वक्त मुश्किल है तो याद रखिए, वक्त की सबसे खूबसूरत बात बस यही है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता। ना खुशियां हमेशा रहती हैं ना परेशानियां। जब अंधेरा गहरा हो तो हिम्मत मत हारना, जब रास्ते बंद लगने लगे तो भरोसा मत छोड़ना, और जब सब कुछ आपके हिसाब से ना हो रहा हो ना, तब उस रब पर यकीन रखना जो हमेशा आपके लिए आपसे बेहतर सोचता है। हो सकता है कि आज आपका इम्तिहान चल रहा हो, लेकिन कहते हैं ना हर इम्तिहान के बाद एक नया सफा खुलता है, और जब वक्त बदलता है ना तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होता है। और इसी बात पे कुछ तो पंक्तियां हैं जो मेरे पापा ने लिखी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हौसलों को टूटने मत देना, रास्तों को छूटने मत देना, रब पर इतना भरोसा रखना कि अंधेरों को रोटने मत देना। वक्त जरूर बदलेगा एक दिन मुस्कुराकर, बस अपनी हिम्मत को कभी खुद से दूर होने मत देना। तो चलिए अगर बात अच्छी लगी तो मुझे एक थैंक यू मैसेज हो जाए, क्या कहती पब्लिक? 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा।
4: नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है, है?
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
1: कटी? कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद इरशाद।

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Number 17.

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची इट्स हॉट अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
8: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 15.
3: Oh, look at me!

फॉर मी ये कॉकटेल का सबसे हल्का गाना है, एंड मे बी दैट्स व्हाई वल्ला इस हफ्ते भी नंबर 15 पर है। और कॉकटेल 2 को देखकर एक बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है, हिट गाना बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है एक्साइटमेंट को जिंदा रखना। आजकल बॉलीवुड में फिल्म अनाउंस करना बहुत आसान हो गया है, मोशन पोस्टर, टाइटल रिवील, टीजर, सोशल मीडिया ट्रेंड, और फिर होता है इंतजार, अ लॉन्ग वेट। नाउ यश की टॉक्सिक को ही देख लो, पहले एक रिलीज डेट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब फाइनली 26 अगस्त 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एंड देन यू गॉट सलमान खान की मातृभूमि। दो गाने आ गए थे वैसे मिर्ची टॉप 20 पर, फिल्म की बातें भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज अगर आप सलमान खान को गूगल करोगे तो ज्यादा डिस्कशन उनकी अगली फिल्म का हो रहा होता है, वेयर ही इज वर्किंग विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर कॉल्ड वामशी पेडपल्ली। अजीब है ना, कभी कभी लगता है बॉलीवुड फिल्म बनाना नहीं एक्सपेक्टेशन मैनेज करना हार गया है, क्योंकि हाइप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप वक्त पर रिलीज नहीं कर पाए, ऑडियंस रुकती नहीं, वो अगला ट्रेलर देख लेती है, अगला गाना सुन लेती है, अगली फिल्म का इंतजार करने लगती है। लेकिन नंबर 14 पर एक टिपिकल समर कॉमेडी बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 का ये भोजपुरी फ्लेवर वाला पुल ऑन देसी गाना चटनी। नंबर

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
3: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, It's Hot.
1: Bollywood Bol Dal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
0: Only on Mirchi, It's Hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
10: Number 13.

0: नंबर 12।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये जो सुना ना अभी, ये इस हफ्ते की नई एंट्री है, नंबर 12 पर, इश्क कमीना 2.0। अबे क्या है ये? देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि जब म्यूजिक अच्छा लगता है ना, मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, और जब म्यूजिक बकवास होता है तो उसे भी उतनी ही ऑनेस्टी से कॉल आउट करता हूँ। यार एक क्लासिक गाने को रीमेक करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे बिना फील के, वाइब के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिना सब्सटेंस के रीमेक करना जरूर गुनाह है। ओरिजिनल इश्क कमीना सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, उसमें शरारत थी, आइटम सॉन्ग होने के बावजूद एक अदा थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है। देखो धुरंधर ने हमें सिखा दिया है कि अगर रीमेक्स बनानी ही है तो वो कैसे बनानी है।

धुरंधर ने सिर्फ गाने उठाए नहीं, उसकी स्पिरिट को समझा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज जो है वो सही की इन लोगों ने, सोनू निगम और अलका याग्निक की असली आवाज को बरकरार रखा, बाकी सब इतना ऑर्डिनरी है भाई। और अफसोस इसलिए भी है क्योंकि बेबी डो डाई डो का ट्रेलर जेन्युइनली मुझे एक्साइटिंग लगा था। एक डेफ और म्यूट असैसिन, क्या कमाल का प्रमाइस है। लेकिन कभी कभी एक गाना फिल्म की एक्साइटमेंट को बना भी देता है और उसे बिगाड़ भी देता है। कॉकटेल 2 ने पहला वाला काम किया था, एक के बाद एक चार्ट बस्टर्स, और उन्हीं में से एक इस सीजन का सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग है। नंबर 11 पर दिस इज द किंग अरिजीत सिंह विद द सॉन्ग तुझको। नंबर 11।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
2: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: गुरु रंधावा के हिट फैक्ट्री से एक और चार्ट बस्टर केयर सिर्फ दो हफ्तों में टॉप 10 में आ गया है। और ऑनेस्टली अगर परफॉर्मर्स की बात चली है तो सनी देओल का नाम उस लिस्ट में हम कैसे ना लें। हाल ही में उनकी एक फिल्म इक्का का टीजर मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा और उसमें सनी देओल को फिर से लॉयर के रूप में देखते ही मुझे एक बात समझ आ गई। अगर आप 2005 के बाद पैदा हुए हैं ना तो शायद तारीख पे तारीख आपके लिए सिर्फ एक मीम होगा। लेकिन मीम तो वो बाद में बना, पहले वो सिनेमा था। 34 साल पहले दामिनी नाम की एक फिल्म में सनी देओल ने एक अदालत के सीन को इतना आइकॉनिक बना दिया कि उसके डायलॉग्स आज भी लोग कोट करते हुए नहीं थकते।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलोट। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।
0: आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ तारीख पे तारीख ही नहीं, 2.5 किलो का हाथ भी इसी फिल्म की देन है। नाउ इक्का का टीजर उस याद को भी सल्यूट कर रहा है और तब समझ आता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस फ्राइडे से संडे तक नहीं जीती, 3 दशक तक जिंदा रहती हैं और उनके
1: तो इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलोट। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।
0: आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ तारीख पे तारीख ही नहीं, 2.5 किलो का हाथ भी इसी फिल्म की देन है। नाउ इक्का का टीजर उस याद को भी सल्यूट कर रहा है और तब समझ आता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस फ्राइडे

0: इश्क होना है इज डाउन टू मे बी वन और टू शोज एट द सिनेमा हॉल्स, लेकिन उसका साउंड ट्रैक अभी भी लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है इस हफ्ते नंबर 9 पर। ये है वाओ
1: नंबर 9।
2: वाओ

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम. आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं. आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए. जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था. जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के. आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है.
2: क्या तुझे पागल लगा?
3: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे.
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू. हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है. चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना. चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी. मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया. आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार. आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ. चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा.
2: मैंने सोचा
3: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
6: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
1: 89.6 FM
0: Mirchi 1. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 8.

आई हैव नेवर केयर्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song.

0: Sanjay ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल.
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं.
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ.
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा.
7: मिर्ची, इट्स हॉट.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
10: Number 5.

धुरंधर चूका आरी आरी जब जब सुनाई देता है कहीं भी, उसके साथ धूल मिट्टी और देसी स्वैगर की वो खुशबू भी साथ आती है। लेकिन बॉलीवुड की एक और पुरानी आदत है और उसे बॉलीवुड ने कभी छोड़ा ही नहीं, दुनिया भर की जुबानों से जो बे इंतहा इश्क है, कभी हम स्पेन चले जाते हैं।

कभी श्रीलंका की भाषा सिनेला में हम मन के सुन लेते हैं। और प्रीतम दा तो शायद इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिमेम्बर तेरा होने लगा हूं।

अंग्रेजी लव्स इंडियन मेलोडी. फाइनली इनफ. बॉलीवुड कभी फॉरेन लैंग्वेज में गाने नहीं बनाता, वो सिर्फ हिंदी गानों को एक पासपोर्ट दे देता है. गाना चाहे स्पेन चले जाए, इटली घुमाए या फिर श्रीलंका से होकर निकले, दिल उसका हमेशा हिंदी में ही धड़कता है. और शायद इसलिए ये गाने फैशनेबल लगते हैं, ग्लोबल लगते हैं, लेकिन टोटली अपने लगते हैं. इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 का वो समर एंथम जिसमें इटली का रंग है और बॉलीवुड का दिल है. दिस इज राघव चैतन्य विद माशुका. नंबर 3.

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक। What is the ultimate fitness tip?
4: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आम तौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
3: Sleep well. ओहो हो हो, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
9: नंबर 2

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर हॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया, तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची, शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे, इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं। लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

दिया जाने वालों, अपना कान जरा ध्यान से सुन के लगा लो। यहाँ पर मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहता है कि कतर में हमारी इंडियन एम्बेसी ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं, और ये है एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन को मैंडेटरी बनाने के बारे में। यस, इंडियन एम्बेसी दोहा ने सभी उस इंटरनेशनल ट्रेवलर को कहा है जो इंडिया के लिए उड़ान भर रहे, कि आपको इंडिया पहुंचने से 24 घंटे पहले एयर सुविधा का एक फॉर्म भी भरना है। यस, ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग इन इंडिया, इन्हें मैंडेटरी ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और अपनी जर्नी के 24 घंटे पहले इसे सबमिट कर देना है। इस बात को याद रखिए, एम्बेसी ने जोर देकर कहा है कि ये बेसिकली आपके लिए क्या करेगा, ये आपके लिए फास्टर, सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस कराएगा। यानी कि अगर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो आपके पास मौका होगा बिना किसी के टच किए आराम से सीमलेस तरीके से आप इंडिया में इमिग्रेशन क्लियरेंस कर लेंगे, हेल्थ स्क्रीनिंग भी हो जाएगी, और ये सब कुछ इबोला को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। यस, इबोला जो कि अफ्रीका से एक वायरस आया है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। एम्बेसी ने यह भी कहा है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दीजिएगा अपने ट्रेवल हिस्ट्री की, पिछले 21 दिनों में अगर आप कहीं गए हैं आए हैं तो भी बताइएगा, और किसी भी तरह का सिम्टम या एक्सपोजर लगता है आपको किसी तरह से हुआ है, आपके हेल्थ पे कुछ असर है, तो वो भी जरूर क्लियर कीजिएगा। इंडियन एम्बेसी इन दोहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सारे करेक्ट तरीके बताए हैं, और एयर सुविधा का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, airsuvidha.civileviation.gov.in। आई रिपीट, airsuvidha.civileviation.gov.in। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए भला नहीं करते हैं, आप दूसरों को भी बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। इस बात को समझिए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं है? राकेश तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोले परेशानी? तमीज़ तमीज़ होनी चाहिए यार, यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
3: FM, मिर्ची वन।

0: काम ऐसा करो कि दुनिया आंख बंद कर आप पर भरोसा करे। अब बिल्कुल ऐसा ही काम किया था हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022। तभी तो आज यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में भी हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी को संभाल रही है। यस, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको सबने कतर की मदद ली है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो वहां जाकर वर्ल्ड कप को एकदम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ पूरा करा पाए। और ये बताता है कि ये सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट नहीं है बल्कि ये हमारे कतर को मिला वो सम्मान है जो हमने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान पाया। और अब दुनिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पर भरोसा कर रही है इसी उम्मीद में कि हम जब मेहनत से कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करती है। कतर एक बार फिर से ग्लोबली अपना इंपैक्ट बना रहा है और जिस तेजी से पूरी दुनिया कतर के हर बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनका साथ दे रही है, वो दिन दूर नहीं जब ऐसी वजह से हम ओलंपिक भी होस्ट करेंगे। यस, तैयार रहिए एंड प्राउड ऑफ कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी मेहनत से उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करा रही है और दुनिया का भरोसा जीत रही है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: और इस गर्मी की छुट्टियों में अगर आप अपने होम कंट्री नहीं गए हैं तो कतर में क्या एक्टिविटी में आपके बच्चे जा सकते हैं, हम बताते हैं।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यहाँ मस्त फॉलो करो, आपको बताना चाहेगा कतर फाउंडेशन डाइवर्स रेंज ऑफ कैंप्स लेकर आया, वर्कशॉप है, क्लासेस है, एक्टिविटीज है, जो की आपके बच्चों को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर लर्निंग, कनेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ। एंड ये सब कुछ होगा एजुकेशन सिटी ऐप के जरिए, वहां पर आपको जाकर रजिस्टर करना है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए अपने बच्चों को, जो मजा आता है जिस चीज में। एंड एजुकेशन सिटी ऐप या उनकी वेबसाइट पर जाकर आप एजुकेशन सिटी के इस समर कैंप में जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो आपके बच्चे की लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना हो, उनके लिए कुछ क्रिएटिव कराना हो, वो कैसे स्पोर्ट्स के जरिए एक्टिव रहे, या फिर उनके अंदर एक नया पैशन कैसे डेवलप हो, ये सब कुछ एजुकेशन सिटी के इस समर कैंप का हिस्सा बनेगा। जुलाई अगस्त अभी भी बचा हुआ है दोस्तों, कतर फाउंडेशन जब ऑफर कर रहा है इतनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज, तो मुझे लगता है आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम तैयार है। और ये वो टाइम होता है जब बच्चों को वाकई में एक्टिव बनाए रखने के लिए हमें उनके लिए जरूर एक्टिविटी चुननी चाहिए, वरना उन्हें तो ये पता ही लगेगा कि 70 यार्ड्स का ग्राउंड भी होता है, क्योंकि उनके लिए तो सारी दुनिया 7 इंच के मोबाइल फोन में ही है। 89.6 virgin 1 it's hot।
2: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center।

0: नहीं पता है मुझे कि गर्मी बहुत है, तो मैं कह रहा हूँ लस्सी पियो, मैंगो शेक पियो, ठंडा पानी पियो, मस्त रहो। लेकिन फिलहाल गर्मी का अब जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और हमें और आपको अपने पानी पीने के पारे को भी बढ़ाना है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: बात करें तो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मिनिमम अराउंड 28। हवाओं की बात करें तो इनका रुख भी 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास चल रहा है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं, धीरे धीरे गर्मी अपने चरम पर बढ़ती जा रही है और वो टाइम है जब हमें अपने पानी पीने की कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देना है। दोस्तों पानी पीजिए, ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए एंड अपने कानों को एक ड्रिंक दीजिए, वो है मिर्ची वन कतर। तो लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, मिर्ची सुनते रहो, मस्त मौला गौरव के साथ शाम शानदार। और मिर्ची मम्मी अवार्ड सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले इस वक्त चल रहा है एंड आपको एक एक हलचल अगर देखनी है तो मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, सारी स्टोरीज पे चेकआउट करते रहो और मिर्ची सुनते रहो। इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के 4। मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार।
2: हाँ

आज के बच्चों के लिए तो मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, वो उनका प्ले जोन है। एक हमारा दौर था, मोहल्ले की हर बिल्डिंग हमारा प्ले जोन होती थी। आई स्पाई से लेकर चेन, विच कलर यू वांट, टिप्पी टॉप, सब खेला हमने। ये बच्चों से सब कुछ दूर हो गया, लेकिन उनके अंदर फिर से बहुत सारा प्यार जगाइए टॉयज के लिए, क्योंकि जो बच्चे इस बार घर नहीं जा पाए, DCC में आ चुका है कतर टॉय फेस्टिवल। यस, अब शुरुआत हो चुकी है। 31 जुलाई तक कतर टॉय फेस्टिवल का 4th एडिशन चलेगा, एंड बच्चों के लिए इस बार भी कुछ कमाल के जोन है। अगर हम यूथ जोन की बात करें, पबजी मोबाइल, पॉपी प्ले टाइम, चैंपियंस लैंड, ये बनाई गई है। वहीं बहुत सारे अरीना है जिसमें हॉट व्हील्स, पैकमैन भी है, और तो और बड़ी बात यह है कि फ्लिंटस्टोन्स, मिकी माउस, फैंसी लैंड सब कुछ है। डिज्नी प्रिंसेस, फ्रोजन, क्यूटी पाई लैंड, लीलो एंड स्टिच, पॉ पेट्रोल, वन ऑफ माय फेवरेट दीज डेज। कुल मिलाकर ये वो जोन है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। जाइए, टॉय फेस्टिवल का 4th एडिशन चलेगा, एंड बच्चों के लिए इस बार भी कुछ कमाल के जोन है। अगर हम यूथ जोन की बात करें, पबजी मोबाइल, पॉपी प्ले टाइम, चैंपियंस लैंड, ये बनाई गई है। वहीं बहुत सारे अरीना है जिसमें हॉट व्हील्स, पैकमैन भी है, और तो और बड़ी बात यह है कि फ्लिंटस्टोन्स, मिकी माउस, फैंसी लैंड सब कुछ है। डिज्नी प्रिंसेस, फ्रोजन, क्यूटी पाई लैंड, लीलो एंड स्टिच, पॉ पेट्रोल।

0: खिलौनों का प्यार फिर से जगा दिया है तो कोई बुराई नहीं है, वरना बच्चों को आजकल यही लग रहा है मोबाइल ही उनके लिए असली खिलौना है। मम्मी पापा किसी भी पार्टी में जाएं बच्चे सीधे आते हैं, पापा मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल दो मुझे खेलना है, हैं जी। उनको बताओ कि ऐसे खिलौने होते हैं, हमारे जमाने में यही सब खेलते थे कि मोबाइल नहीं। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vidva la murga. Milci, murga.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए ऊँ चाहिए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। उत्तर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आप चाहे कितना भी जान जाए लेकिन ब्राउन सीरीज में क्या चल रहा है ये हम ही आपको बताएंगे। मस्त मौला गौरव आपके साथ है और इस वक्त जो हमारी सिटी ऑफ जॉय है ना उसकी सांसें थमी हुई है क्योंकि कोलकाता की खूबसूरत गलियों में इस वक्त खून की होली खेली जा रही है। और ये होली कौन खेल रहा है, वो कौन सा बेरहम किलर है, इसी का पता लगाने आ चुकी है करिश्मा कपूर एज ऑफिसर ब्राउन। एंड आइकॉनिक करिश्मा कपूर जब कम बैक कर रही है तो इतने दमदार तरीके से कि एकदम कड़क नो बकवास वाली पुलिस कॉप के रूप में। एंड आई एम श्योर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर ब्राउन का लेटेस्ट एपिसोड आप देखने के बाद समझ जाओगे कि एक एपिसोड देखकर काम नहीं चलेगा, इसे पूरा ही कंप्लीट करना है। तो Z5 पर ये स्ट्रीम हो रहा है और अगर अभी तक आपने Z5 स्ट्रीमिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो बहुत सस्पेंस से बहुत दूर हैं आप। ऐसा सस्पेंस जो आपके गूज बम्स ला देगा, रोंगटे खड़े कर देगा। एंड अगला शिकार कौन होने वाला है, क्या उसे करिश्मा कपूर बचा पाएगी या फिर ये बेरहम किलर एक और हत्या करेगा, इसके लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ब्राउन का लेटेस्ट एपिसोड देखना होगा। एंड हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, अकेले मत देखना वरना डर जाएंगे। सच में यार इतना भयंकर सस्पेंस और थ्रिल भरा हुआ है ना कि मैं कहता हूं इसे आप जितनी जल्दी हो सके देखो और आप तब कहोगे यार गौरव ने सही बता दिया यार, टाइम पास अच्छा हो गया। फिलहाल करिश्मा कपूर के दमदार रोल देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है Z5 का एंड देखनी है वो सीरीज जिसका नाम है ब्राउन 89.6 मिर्ची 1 पर। वैसे तो हम कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, रसगुल्ला, मिष्टी दही के लिए जानते हैं लेकिन इस एपिसोड के बाद हम थोड़ा थ्रिल और सस्पेंस के लिए भी जानेंगे मिर्ची थॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
7: अरे यार हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
9: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
10: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
11: खूब मिलेगा, मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: इश्क जैसा तो नहीं, शॉर्ट ट्रिप जैसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो जरूर सुनिए। अगर आप कतर से गाड़ी चला के सऊदी अरबी जा रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट प्लान आपका स्पॉइल ना हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी गई है आपके सामने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक में, जहां पर मोटर व्हीकल्स जो कि कतर को छोड़कर बाहर जाना चाहती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के किसी भी जगह, तो उनके पास एग्जिट परमिट होना चाहिए फ्रॉम जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक। और ये मेक श्योर कीजिए कि व्हीकल का कोई भी आउटस्टैंडिंग ट्रैफिक वायलेशन ना होगी। पता लगे बॉर्डर पहुंचे, अरे भैया गाड़ी में तो चलान लगा हुआ है, वेल स्पेशली आपको फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि पॉइंट ऑफ अराइवल भी बताना है। और अगर आप व्हीकल ओनर हैं तो आपको ऑथराइजेशन का, ओनर ऑथराइजेशन का कि आपका ही व्हीकल है, वो एक प्रूफ रखना पड़ेगा। और अगर आप किसी का लेके जा रहे हैं तो उसका भी आपको व्हीकल ओनर का प्रूफ रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप इसके अलावा व्हीकल एग्जिट परमिट वाया मेथराज भी अप्लाई कर सकते हैं एंड GCC ट्रेवल एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन याद रखिए उसके लिए एग्जिट परमिट रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, नो आउटस्टैंडिंग ट्रैफिक वायलेशन, और जितने भी फाइन्स हैं पहले भर दो भैया। और कतर वापस आते टाइम भी एग्जिट परमिट के साथ रिटर्न परमिट भी आपका होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लेना है जी। इसी उम्मीद में कि आप इन बातों का ध्यान रख के ही कोई छोटी सी ट्रिप प्लान करेंगे, वरना एक हफ्ते से लेकर एक साल की जेल भी है अगर कोई भी तरह का वायलेशन पाया गया, और 3,000 से 10,000 कतरी रियाल के बीच का फाइन भी। पता लगे जितना ट्रिप का प्लान नहीं उससे ज्यादा फाइन भर रहे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के अपना होश हवास में एकदम आराम से ड्राइव सेफ ड्राइव स्लो एंड कोशिश ये कीजिए वेकेशन अच्छा हो, उसके लिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग भी करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं मस्मोलो वर्क के साथ मिर्ची शॉट, आइए झिंगा डांस करें।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
3: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो physique है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, Akshay Kumar will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस.
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट
6: Qatar ka number one radio station.
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: गुरु रंधावा की आवाज में नाच मेरी रानी किसने सुनाया? वैसे फिलहाल के लिए रानी नाच रही है, नाचने दीजिए, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, समर कैंप एक्टिविटीज बहुत सारी जगह चल रही हैं एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने भी इसे आपके लिए शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे छुट्टियों में जब घर पर होते हैं ना तो उनका ज़्यादातर दिमाग होता है कि गेम खेल रहे हैं, टीवी लगा लें, यूट्यूब पे चले जाएं, अपने मोबाइल पे बैठ जाएंगे, अपने टैबलेट पे बैठ जाएंगे। प्लीज़ उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए आप इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी उनका पार्टिसिपेशन करा सकते हैं। कोशिश यही कीजिए कि बच्चे एक्टिव मोड में रहें और पढ़ाई का भी एक टाइम निकालिएगा। मुझे अच्छे से याद है मेरे समर वेकेशन टाइम पे होता था, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। इसमें दो महीने कैसे बीतते थे, ये कल कब दो महीनों बदल जाता है पता ही लगता था। और फिर स्कूल खेलने के 5 दिन पहले हम पूरे होमवर्क करने की तैयारी करते थे और फिर बिना होमवर्क किए जब कॉपी लेकर स्कूल में जाते थे, दे दनादन दे दनादन। तो भाई वो गलतियां आज के बच्चे ना करें, हम यही चाहेंगे। इसी उम्मीद में कि आप अलग अलग समर कैंप का हिस्सा बन रहे हैं, यहाँ के कतर में अलग अलग जगहों पर अनाउंसमेंट है, जरूर लेकर जाइए अपने बच्चों को, उनको एक्टिव बनाए रखिए। मस्मोला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार लेकर यहीं मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: गाना इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है। साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है, 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indi Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
5: Number 10. Hao chup kar lang jaave kol di tu sang jaave ko takkani ch tere rang vich rang jaave.

0: सबसे सीनियर सिटीजन है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करे। मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है @RJKanika पर। कोई गाने सजेस्ट करने हैं, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। जो अगले वाला गाना है उसे इस काउंटडाउन पे पूरे 23 हफ्ते हो चुके हैं। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है। आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है। उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है। आई एम टॉकिंग अनूप जैन, एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक। बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ। प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला, बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए, और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है। कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से, एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग। एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस, दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से। दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग साउंड्स सो इनक्रेडिबल, बिकॉज इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है। पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था, लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

0: नहीं मुझे ये बताओ भाई कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में कितने पैसे कमा। तमीज से ही बात कर रहा हूँ, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
1: कटी कौन बोल रहा है?
0: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
0: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
0: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
0: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना, मैं
0: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
0: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
0: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM
2: Mirchi One. It's
6: hot. Ghana Indie Top 10
7: Kanika ke saath on Mirchi
2: number 6.

0: for me now.
1: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, pichle hafte se teen position niche drop hoke, unka gana Dealer this week on Gaana number 6. Usse pehle ek nayi naveli entry hui Jasleen Royal ka gana Inaam, jisne debut kiya on Gaana number 7.
2: Gaana Indie Top 10.
3: Gaana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath. On Mirchi.
1: Hello, swagat hai aapka. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. And now it's time for us to shine spotlight on our indie pick of the week. And aaj ka gaana spotlight is... गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशन देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्यूटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी song, cause एक तरफ है येलो डायरी, one of the best indie pop bands that we have seen. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है, जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहां एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहां कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही है पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दिस इज रोज रोज ऑन गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this is the song जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे absolute top favorite vocalist बन गए थे. What a voice, goosebumps आ जाते हैं उनकी गाने के through जो feelings बयां करना जा रहे हैं ना, वो into 10 times feel होती हैं. राजन बत्रा की आवाज़, Yellow Diaries का गाना featuring शिल्पा राव, that was Rose Rose. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी playlist में add कर लीजिए. One of those pop songs जो उतने ही बड़े हुए जितने film के गाने होते हैं. Now countdown पे आगे बढ़ने से पहले, it's time for इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनेका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनेका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका. एंजॉय. नंबर 5.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
4: अरे चाटा क्यों मारा?
5: चला पैसे निकाल.
4: किस बात के पैसे?
5: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते
6: हैं. क्या बोला तूने?
4: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ.
7: क्या जोक मारा भाई?
4: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
5: कौन सा?
4: चाटा लगा
5: भाई लगा.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
10: आएंगे दीदी.
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ On Mirchi.
14: Number 4.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

द ओजी बाय कुमार सानू कॉल तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्का और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज

द ओजी पॉप स्टार सॉन्ग गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा बाय अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, लाइक एक पॉप एंथम बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था, कॉल करके एसएमएस करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक्स सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वॉज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अशकाय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
3: मिर्ची सुन रहे हैं आप, हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
9: कायर जो थे वो शायर बने।
3: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7। फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
10: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबी ना।
3: संजू राठौड़ विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
11: नंबर 2।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Yeah. Hi Anjali, Mirchi Helpline. Bol.
1: You know I love twinning, par mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
2: Hey, to galat thodi bol raha hai. लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि.
3: मस्त जोक मारा रे. हंस रे हलकट हंस.
0: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: कुछ लोगों को अलग अलग तरीके की आदतें होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदत बन जाते हैं, और वो जो लोगों वाली आदत होती है ना वो बड़ी ख़राब है, यू नो, बिकॉज जब फिर वो शख्स हमारे आसपास नहीं है तो फिर हमें बड़ा ही लोनली फील होता है. नहीं
1: मिर्ची कैफे.
0: फिलहाल आपको लोनली फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शो शुरू हो चुका है मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. Only on मिर्ची. इस शो को अपनी आदत बनाओ. और ये जो गाना भी मैंने आपको सुनाया है, यू नो वॉट, अगर आपने बंदिश बैंडिट्स देखी है तो आपने देखा होगा वो सितार प्लेयर परेश पहूजा जिनका ये गाना है, बहुत और भी जगह ये नजर आए हैं, पर ये इनका गाना, इस गाने से परेश पहूजा को एक बहुत ही प्यारी म्यूजिकल आइडेंटिटी मिली है, विच इज सो रोमांटिक, सो बटरफ्लाइश ना, कितना प्यारा सा गाना है ये, खूबसूरत सा. इसको सुना आपने अभी यहाँ पर, और हम अभी बात कर रहे थे आदतों की. तो आपने भी देखे हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी आदत होती है बहुत ही रफ रूड बिहेवियर की, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल ही करेला और नीम चढ़ा क्या है भाई. और फिर वही लोग जब किसी और से मिल रहे हैं या किसी प्रिटेंस में, यू नो, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मिल रहे हैं तो फिर वो एकदम ऐसे विनम्र हो जाते हैं. उन लोगों के लिए ये मेरा नेक्स्ट गाना, AR रहमान का कॉम्पोजिशन, मधुश्री की बेहद खूबसूरत आवाज. याद करो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी को और सुनो ये गाना ओनली ऑन मिर्ची कैफे. ऐसे ही मेरे साथ यहाँ मौजूद रहिए, स्टे ट्यून टू मिर्ची, क्योंकि आगे आने वाली है और भी बहुत मजेदार बातचीत और गाने. स्टे ट्यून टू मिर्ची, मैं हूँ पारुल आपके साथ ओनली ऑन मिर्ची कैफे. इट्स हॉट.
2: कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त.
0: उन लोगों के लिए ये मेरा नेक्स्ट गाना, AR रहमान का कॉम्पोजिशन, मधुश्री की बेहद खूबसूरत आवाज. याद करो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी को और सुनो ये गाना ओनली ऑन मिर्ची कैफे. ऐसे ही मेरे साथ यहाँ मौजूद रहिए, स्टे ट्यून टू मिर्ची, क्योंकि आगे आने वाली है और भी बहुत मजेदार बातचीत और गाने. स्टे ट्यून टू मिर्ची, मैं हूँ पारुल आपके साथ ओनली ऑन मिर्ची कैफे. इट्स हॉट.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: इस वक्त हम हमारी लाइफ के जिस भी स्टेज पर हैं, बहुत सारे हम सफर बदले हैं हमारे, नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स पर से, बट यू नो हम सफर का एग्जैक्ट मतलब होता है साथ चलने वाला. स्कूल में अलग हम सफर थे, कॉलेज में अलग, ऑफिसेज में अलग, अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग. तो जिस तरीके से हमारी जगहें बदलती रहती हैं, फेजेस बदलते रहते हैं, पर एक कोई ऐसा हम सफर अगर आपके साथ है जो आपके साथ बहुत वक्त से है, और इन ऑल द सेंसेस, यू नो, इमोशनल डिपेंडेंस, फिजिकल अवेलेबिलिटी, हर चीज में वो आपके साथ है, उसको ना, उस इंसान को सेलिब्रेट करना मत भूलो यार.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ. और अभी अभी अपने एक गाना सुना, दिस इज अ मैशअप ऑफ ओ साथी एंड हम सफर, निकिता गांधी और एश किंग की आवाज में. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग ना. और पता है मुझे क्या मजेदार बात लगती है, हम सब लोग जो गाने सुनना पसंद करते हैं, हमारी अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट होती हैं जो कि हमारे मूड पे डिपेंड करती हैं. कभी कभी तो हमारी प्लेलिस्ट होती भी नहीं है. एंड फॉर पीपल लाइक दोज, रेडियो यानी कि हम आते हैं आपकी जिंदगी में टू गिव यू दैट सरप्राइज एलिमेंट कि हाँ, प्लेलिस्ट में तो आप सोच के ढूंढ के गाना चलाते हो ना, यहाँ पे जो आप गाना सुन रहे हो वो कहीं से भी एकदम से आ सकता है. दैट इज द ब्यूटी. एंड माय डियर ब्यूटीफुल पीपल, ये जो अगला गाना मैं आपके लिए चला रही हूँ, अरे भाई मतलब उस वक्त का ना, बहुत ही क्लासिक गाना है ये. अभी तक मुझे एज फ्रेश एज एवर लगता है ये गाना. AR रहमान सर की कॉम्पोजिशन. आप इस गाने को सुनो. नोल जेम्स और शंकर साथ साथ में हैं इस गाने में, और इसकी जो वीडियो थी वो भी उस वक्त के हिसाब से बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग थी. प्रभु देवा का डांस और इस गाने के पर्टिकुलरली लिरिक्स आप नोटिस करना. सुनो इस गाने को, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बाय गॉड यार, अनु मलिक का ना ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स है। क्या ही कूल हैपनिंग गाना सुना अभी अभी आपने ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची,
1: मिर्ची कैफे।
0: और बाय गॉड ये जो गाना है ना अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज में, यार प्लीज याद करो वो मोमेंट जब सलमान खान थे अपने एक्चुअल रियल स्वैग में। दोज डेज बैक देन, आई डोंट थिंक इतना हैंडसम एक्टर हमें अभी तक मिला है। और जब भी मैं ये वाले गाने सुनती हूँ ना सलमान खान के, मुझे लिटरली वो एरा याद आ जाता है जब बैक टू बैक इतने हैंडसमनेस से भरे हुए गाने आते थे सलमान खान के। एंड देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रूव, आपने कभी नोटिस किया है ना, उस दौर में सलमान खान की आंखों में एक अलग सा ग्लिटर था, एक शरारत थी। और इवन व्हेन ही यूज्ड टू फ्लर्ट विद द हीरोइंस, वो ऐसा क्यूट सा लगता था जैसे कि वो हमारे साथ ही हो रहा है, हम वहाँ बैठ के लड़कियाँ वहीं खुश होती रहती थी कि ओए ओए सलमान खान। सो बाय गॉड टू ऑल द सलमान खान लवर्स आउट देयर, अगला गाना ये कमाल का गाना, कमाल नहीं गाया है जो, ये गाना बिना चलाए मैं सलमान खान की बात तो नहीं कर सकती हूँ गाइस। एंड अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि ये जो गाना था इसमें शर्टलेस सलमान जो स्टेज पे डांस कर रहे थे विद द गिटार, ये बाय चांस हो गया था। इट वाज नॉट प्री डिसाइडेड कि सलमान शर्टलेस जाएंगे, इट हैपेंड बिकॉज वो शर्ट पहुंची नहीं जो पहननी थी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट दिस सॉन्ग, लेट्स हियर दिस आउट ऑन मिर्ची कैफे। सुन रहे हैं आप मेरे आने पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इसको एंजॉय करो, अभी आ रही हूँ वापस।
2: आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से

0: अरे कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी है, जरा दिल को तो गुनगुना करने दो यार, खुश रहो ना गाइस।
1: मिर्ची कैफे,
0: ये गाना आपने अभी अभी सुना ताके झाके ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। क्वीन का ये गाना यार, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अन्विता दत्त ने बहुत प्यारे लिरिक्स लिखे हैं एंड ऑफ कोर्स द ग्रैंड अमित त्रिवेदी, इतने प्यारे तरीके से वो पूरा कंपोज करते हैं अपने गानों को, और अरिजीत सिंह की आवाज फॉर श्योर, जिसे हम अब प्लेबैक में मिस करेंगे, बट वी हैव a lot of songs, you know, so that we don't miss him. तो वो इतना ऑलरेडी हमको प्लेबैक करके दे गए हैं फिल्म्स में कि हम मिस ना करें, एंड आई एम श्योर वो और भी बहुत सारे गाने गाते ही रहेंगे, बिकॉज अरिजीत और म्यूजिक ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। जैसे कि ये जुदा नहीं रह पा रहे थे इस फिल्म की शूटिंग के बाद करीना कपूर और सैफ अली खान। या तो अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है फ्रॉम द फिल्म टशन। अगर आपने मेरी बातों से गेस कर लिया है, सो यू राइट, ऐसे ही थोड़ी दिल हार गए थे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर। शूटिंग के दौरान काफी कुछ चला था जो कि हमने काफी चीजें सुनी भी थी, बट यू नो व्हेन पीपल वर्क टुगेदर दे फाइंड पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स, या फिर वेवलेंथ मिल जाती है, मैच हो जाती है। और वैसे भी यार इस इंडस्ट्री में तो आप देखो ना, इतने गुड लुकिंग लोग होते हैं तो पहली चीज तो हमेशा अट्रैक्शन से शुरू होती है, एंड देन इट लास्ट्स लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो सुखविंदर सिंह की आवाज में इसकी ना इस गाने की बीट मुझे बेहद पसंद है, सो यू हैव टू आराम से अपनी अगर गाड़ी में बैठे हो तो तेज वॉल्यूम करके सुनो इस गाने को ऑन मिर्ची कैफे। मैं हूं आपके साथ पारुल, ऐसे ही चटपटे चटाकेदार गाने आपके लिए चलाती रहूंगी ऑन दिस शो। सुनो फिलहाल इसको एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hello, Mirchi Helpline.
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना, तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स

0: हाय गाइस, मैं हूं अपार शक्ति खुराना और आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
1: आपको पता है इस कमरे की बेस्ट बात मुझे क्या लगती है? जिस छोटे से स्टूडियो में हम बैठते हैं एक प्यारे से माइक के साथ, कि यार एक बंद कमरे में बैठकर मैं इतने लोगों से मिल पाती हूँ और इतनी सारी बातचीत कर पाती हूँ और अपनी बातचीत आपको भी सुना पाती हूँ।
2: मिर्ची कैफे।
1: हाय, सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे, मेरा नाम है पारुल। अपार शक्ति खुराना इज इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन मिर्ची कैफे और हमने काफी इंटरेस्टिंग बातें करी, गेम्स खेले। एंड आई एम श्योर हम सभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि अपार शक्ति का नाम कितना शक्तिशाली है यार, तो वही मैंने पूछ लिया उनसे। तो ये सब आपको बहुत बार बहुत लोग कह चुके होंगे कि आपके नाम में ये जादू है कि आप लॉयर, क्रिकेट कैप्टन, आरजे थिएटर आर्टिस्ट, होस्ट, एक्टर, सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, कैसे कर ले रहे हो सारे काम
3: यार। बारो ऑनेस्टली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना एक मुझे तकलीफ है कि एक जगह पर टिक के ना बैठने की।
1: अच्छा, okay.
3: कुछ ना कुछ चलते रहने की, कुछ ना कुछ करते रहने की, एंड आई थिंक दैट प्रॉब्लम ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। And that's what I'm happy that I have this problem. I'm Amazing. Suffering from this disease.
1: What a lovely disease to have. मैंने सुना है कि आप बड़ी विचित्र विचित्र जगह पे बैठ के गाने लिखते हो। तो सबसे पहले हम इन गानों के बारे में बात करेंगे। तेरे पीछे कहाँ बैठ के आपने लिखा? Because you're also a co-lyricist there.
3: Absolutely. वो कुछ इस तरीके से ही, you know, बातें शुरू हुई थी कि and यार I do have a weird knack of I keep humming, I keep doing something or the other, तो इसलिए पता नहीं चलता है कब कहाँ पे क्या सही चीज निकल आएगी, but majority of the time it has happened on a flight.
1: What a lovely disease to have. मैंने सुना है कि आप बड़े विचित्र विचित्र जगह पे बैठ के गाने लिखते हो। तो सबसे पहले हम इन गानों के बारे में बात करेंगे। तेरे पीछे कहाँ बैठ के आपने लिखा? Because you're also a co-lyricist there.
3: Absolutely. वो कुछ इस तरीके से ही, you know, बातें शुरू हुई थी कि and यार I do have a weird knack of I keep humming, I keep doing something or the other, तो इसलिए पता नहीं चलता है कब कहाँ पे क्या सही चीज़।

0: phone pe likh leta hu notes mein, and honestly I normally rather straight away record on the voice track. So वैसे करता हूँ, लेकिन
1: शब्द और म्यूजिक एक साथ सोचते हो?
0: हाँ जी, वही बोल रहा हूँ, एक साथ सोचते हैं.
1: यार जितने भी म्यूजिशियंस आर्टिस्ट से मैं मिलती हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है जानने में कि उनका राइटिंग का या यू नो सिंगिंग का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बेसिकली तो हर शख्स, हर आर्टिस्ट एक इंसान है ना सबसे पहले, और हम लोग लाइफ में पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजर रहे होते हैं. बट देन व्हेन वी आर एट वर्क, जब हम कुछ लिख रहे हैं या जब हम कुछ गा रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है जिससे वो सब चीजें होती है, ये मुझे जानने में बड़ा मजा आता है. और भी बातचीत जारी रहेगी अपार शक्ति खुराना के साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे, मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. सुनिए ये बहुत प्यारा सा गाना, एंड स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने की?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं, मैं राकेश नहीं हूँ। नवाज साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे, यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा।

0: मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारे बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: आपको बताया, मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो इंसान जो गुस्से में भी काम रह सकता है उससे बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता। नहीं,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और गुस्से वाली बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि यू नो दे से कि जैसा आप गुस्से में बिहेव करते हो या जो जो बातें आप बोल देते हो वो दिखाती हैं कि एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है, चाहे आप कितना भी प्रिटेंस में जी रहे हो। नहीं, सो या दैट इज द स्ट्रगल, अपने आप को काम डाउन रखना गुस्से में, दैट्स रियल FR। वेल बातचीत चल रही है अपार शक्ति खुराना से यहाँ पर, और अपार बड़े काम रहते हैं, बड़े संगीतमय रहते हैं, ये मैं देख रही थी। और अपार, मुझे अब ये जानना है कि एक गाना आपने लिखा था तेरे पीछे, बहुत ही क्यूट उसका EP था, बहुत ही प्यारा वीडियो, बहुत ही प्यारा फील ऑफ द सॉन्ग, कुछ लिरिक्स भी इंटरेस्टिंग आ रहे थे, तो मुझे प्लीज बताओ तो पूरा प्रोसेस कि कैसे आप कोई गाना लिखते हो और कैसे बनाया ये गाना आपने।
2: टॉकिंग अबाउट तेरे पीछे, यार मैं अपनी बीवी के साथ गया हुआ था डिनर करने के लिए, जैसे वो इंस्ट्रूमेंटल नहीं चल रहा होता है, पीछे गिटार की स्ट्रमिंग हो रही होती है, वो चल रहा था यार, एंड उसमें कोई और धुन थी, बट वेरी वियर्डली दिस केम टू माई माइंड जो तेरे पीछे का होके, एंड देन उसकी मेजरली लाइंस आई थी, एंड देन आई स्पोक टू साक्षी रत्ती एंड मीर देसाई, आई वर्क विद देम अ लॉट एंड दे रियली ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी एज अ म्यूजिशियन। तो यार बस उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही, और जब मेरी फेवरेट लाइन मुझे साक्षी रत्ती ने लिख के भेजी, बहुत लोगों ने ना गुलाबी आंखों की बात करी है, नशीली आंखों की बात करी है, बहुत कम लोगों ने बादामी आंखों की बात करी है, एंड इट हैज two meanings to it. First, the almond shaped eyes and the almond brown. So hence it goes like akhane badami vich sur me dil od kiya mere jeh chhatti piche aashiqan di thod kiya gardan surahi utto mala pai motiyan di tu te main kaafi sanu lod kiya bahutiyan di
0: बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू दिस सॉन्ग। सुनो इस प्यारे से गाने को बहुत ही प्यार से, ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ऑन मिर्ची, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद। इरशाद

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको आप कभी भी भूल ही नहीं सकते, और जब भी आप उनको सुनते हो आपको वो पहली मोहब्बत टाइप फीलिंग आती है. दिस वॉज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. नहीं,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. आदेश श्रीवास्तव की कॉम्पोजिशन, सोनाली बेंद्रे द प्रिटी चार्मिंग गर्ल बैक देन, यू नो हमारे रहमान डकैत, अक्षय खन्ना का भी बहुत प्यारा सा चार्म इन दिस फिल्म. यार ये दहक मूवी जो थी ना, ये तो मैंने नहीं देखी आज तक, ऑनेस्टली टेलिंग यू. लेकिन ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ, आई फील लाइक अ यंग लिटिल गर्ल हु इज जस्ट अबाउट टू फॉल इन लव. ये मैजिक होता है कुछ गानों का. Especially this pairing of Hariharan Saab and Sadhana Sargam, na? Lovely song. Anyway, talking of Barish ke gaane, Apar Shakti Khurana is in conversation with me on Mirchi Cafe. Apar, kya aisa moment raha hai aapka Barish wala? You know, you just have to tell me that right now.
2: As old school I am in love, ye hua nahi kabhi. By chance nahi hua.
0: Seriously?
2: By chance nahi hua. Okay. I mean, you know, it's very situational. Main nahi tha unke saath jab Barish ekdam se ho gayi. Main akela hi tha. Tanha.
0: अगर आपका कोई ऐसा प्यारा सा बारिश का मोमेंट है और आपके पास कोई ऐसा गाना है मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए, यू कैन राइट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9930983983, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं parul.world. प्लीज वहां जाके बताओ आपकी प्यारी सी बारिश की रोमांटिक स्टोरी और आपका फेवरेट गाना. ओके, हो सकता है अगले एपिसोड में मैं आपके लिए चला दूंगा. फिलहाल अगला गाना सुनो, ओनली ऑन मिर्ची कैफे. सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
2: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो physique है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, Akshay Kumar will be the only guy who will survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस.
4: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट
5: Qatar का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची। और अपार शक्ति खुराना के साथ बातचीत हो रही थी और वो गाना मैं ना याद करूं ऐसा हो नहीं सकता। आपने भी सुना होगा ना, बैठी कितने बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू ओ भी मजबूर होनी है, सुन दिता गल भी जरूर होनी है, सुन दिता गल भी जरूर होनी है।
1: मिर्ची कैफे,
0: इस गाने के पीछे की सारी कहानी आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। और अपार, आप ये गाना हमारे लिए गाएंगे भी राइट हियर ऑन मिर्ची कैफे, बताइए ना प्लीज, जरूर की जर्नी।
2: यार जरूर तो हैज रियली डिफाइंड यू नो माय म्यूजिक जर्नी सो फार। मैं कब से म्यूजिक करता आ रहा हूँ, रादर रेडियो डे से म्यूजिक करता आ रहा हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू म्यूजिक प्रोफेशनली, एक्टिंग से भी पहले आई वॉन्टेड टू डू म्यूजिक प्रोफेशनली। मुझे नहीं पता था कि ये एक गाना मुझे इतना प्यार दे जाएगा। कुड़िये नी जरूर एंड दिस सॉन्ग का लफ्जा, तीनों बहुत अलग अलग गाने हैं, बट जब जरूर और लफ्जा आता है ना, लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि यार दिस इज यू नो थेरेपी। अगेन यार इट रियली कम्स डाउन टू दोस दैट प्योरिटी ऑफ थॉट एंड सैवी हैज डन दैट अगेन एंड अगेन। मैं तो ऑलरेडी बिना जरूर की बात किए अपा फिर मिलेगी बात कर रहा था मैं तो आपके साथ। द मोमेंट द सॉन्ग स्टार्ट्स यू नो, बैठ के तो बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है। इट रियली एकदम से ना, एक आपने जैसे बोला कि यार थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, पिक्चर बन जाती है, इसीलिए रेडियो ऑडियो ये जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये आपके हैंड राइटिंग है?
0: हाँ जी।
2: कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है यार गाइस, आप देख रहे हो पारुल की हैंड राइटिंग देख रहे हो आप, ये कमाल है। वॉइस को ऐसे कर्सर में लिखना क्यों नहीं आता है बताओ ना मुझे।
0: अब भाई देखो, बॉयज को कर्सिव में लिखना ढंग से आता है या नहीं आता है ये तो हमने नहीं सोचा है, बट मैंने एक्चुअली ये भी नहीं सोचा था कि अपार के साथ इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन होगी। एंड अपार ने अचानक से मेरे कुछ लिखे हुए क्वेश्चंस की नोट्स देख ली और मेरी राइटिंग की, ओफ जो उन्होंने तारीफ करी, आई वॉज लाइक सो हैप्पी एंड एम्बैरस्ड एट द सेम टाइम। पर कभी कभी ना वाकई जो हमने नहीं सोचा वो हो जाता है, और कहते हैं ना कि जो नहीं सोचा हो वो हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसके अंदर ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स होती हैं, है ना। ऐसे ही मोमेंट्स हम सबकी लाइफ में हमेशा आते रहें और बहुत सारी हैप्पीनेस और मस्ती चलती रहे, इसी विश के साथ मिर्ची कैफे का ये एपिसोड करती हूँ मैं यहाँ पे टाटा। और अगला गाना जो आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ फरहान अख्तर का, उसमें भी वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप भी साथ साथ सोचिए और सुनते रहिए मिर्ची। मैं आपसे मिलूंगी थोड़े वक्त बाद, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। वेलकम टू द शो जी। और हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे जब वो ये कहते थे कि यार इवन इफ यू आर हेटिंग समवन ना, अगर आप किसी से नफरत भी कर रहे हैं तो आप उनको अपने दिमाग में, आप उनको अपने जहन में जगह दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक बड़ा बेहतरीन शेर मिला मुझे शाहिद इश्की साहब का। लिखते हैं कि हमसे नफरत करो कि प्यार करो, हमसे नफरत करो कि प्यार करो, कोई रिश्ता तो उस्तवार करो। और कितना सटीक है भाई साहब, कुछ तो हो हमारे बीच। उस्तवार का मतलब पक्का करो, मजबूत करो। हमसे नफरत करो कि प्यार करो, कोई रिश्ता तो उस्तवार करो। और बिल्कुल जायज बात है यार, जब तक आप हेट भी अगर फील कर रहे हैं ना किसी की तरफ, तो कुछ तो है आपके अंदर जो अभी भी उस शख्स से जुड़ा हुआ है, है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। मुझसे बात करना चाहें तो आ सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: इतना पानी फेर दिया, मैं तुम्हें बताने चाह रही तेरी तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
0: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी
0: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
0: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
0: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17 रुपए
0: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
0: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
0: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा और आप रेडियो मिर्ची पे आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं
2: बोल, कौन रहा है?
3: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते?
2: तमीज से
3: ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब इस महफिल में वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आधुनिक हिंदी कविता के एक बड़े ही प्रमुख कवि और कथाकार से। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि बड़े सोशलिस्ट आइडियाज पे लिखा करते थे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और मेरी एक बड़ी ही पसंदीदा कविता है केदारनाथ जी की, जो उनकी विजुअल राइटिंग स्किल्स को दर्शाती है। केदारनाथ जी लिखते हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। वाह जी वाह, दिल खुश कर देता यार, इमेजरी हो तो ऐसी। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Beyond Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और अभी हाल ही में अंकुश कुमार जी की लिखी हुई एक बड़ी अच्छी कविता मेरे हाथ लगी माओं के बारे में, तो मैंने सोचा आपको नजर करूं। माओं की बात केवल मदर्स डे पे थोड़ी ना होनी चाहिए। कविता का शीर्षक है माए। मैं अपने दोस्तों से मिलकर खुश होता हूं और उनके साथ करता हूं बात घंटों तक फोन पर। पिताजी के साथ उनके दोस्त आते हैं कई बार दफ्तर से, गली मोहल्ले के यार दोस्त, कॉलेज के दिनों के दोस्त भी अक्सर आते रहे हैं घर। उन सब से मिलते हुए मैं अक्सर मां की सहेलियों के बारे में सोचता हूं। कहां होंगी वे सहेलियां जिनके संग मां जाती होगी स्कूल, खेला होगा खो खो और स्टॉपू, किसी फिल्म हीरो के सपने जिनके संग देखे होंगे। गली मोहल्ले की ज्यादातर औरतें मां को दीदी बोलती हैं, क्योंकि मां उन सबसे बड़ी है उम्र में। मैं तब सोचता हूं जब मां की सहेलियां बुलाती होंगी मां को नाम से, तब कैसे दौड़ पड़ती होंगी वो। लेकिन न जाने कब से वो तरस गई हैं किसी पुराने परिचित से अपना नाम सुनने को। मैं ये सब सोचता हूं हर बार मां के लिए और उदास होता हूं। मां हालांकि उस उदासी से उबर गई है जब वो 19 बरस की आयु में अपनी सहेलियों से दूर हो गई थी। राखी पर मामा के घर जाते समय मां हर बार लौट आती है अगले ही दिन, और तब मुझे बस यही लगता है कि हर बार माओ को ही क्यों लौटना पड़ता है इस मर्यादा के साथ कि जाओ अब वही है तुम्हारा घर। अगर अपनी माओ के जीवन में हम झांके तो एक वेदना दिखती है जो बड़ी बाद में महसूस हुई। बहुत बड़ा होने के बाद ये महसूस हुआ कि मां की वेदना क्या है। बहरहाल आपको अपनी माँ के बारे में सोच के क्या कोई कविता, क्या कोई नगमा याद आता है? मुझे बताइए मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
3: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
0: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hey! Basanti, in kutto ke saamne mat nachna.
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM, मिर्ची वन, It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि मैं आपको नजर करूं मेरी एक बड़ी पसंदीदा गजल। ये गजल ओरिजिनली मेहदी हसन साहब ने गाई और क्या गाई दोस्त, मतलब वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गजल्स। और इसका जो मैसेज है, इसका जो मतलब है, मानी है, इतना प्यारा है कि दिल छू लेता है, मेरे दिल के बड़े करीब। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था।

0: Mirchi helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, किसी ट्रेन स्टेशन पे, किसी एयरपोर्ट पे कोई शख्स दिखा होगा जिससे आंखें लड़ी होंगी, और ऐसा हुआ होगा कि यार क्या इंसान है, इससे जाके बात करूं क्या, या फिर मुझे तो ये मेरी बीवी जैसी लग रही है ना, ऐसा तो कुछ दिल में उठता है कभी कभी किसी को देख के। लेकिन फिर आप सोचते हो कि चलो दूर से देखते हैं इस खूबसूरती को, क्योंकि पा लेने पे चीजें खराब हो जाती हैं कई बार। शहरयार का शेर देखें, कहते हैं कि शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, शदीद मतलब बड़ी खतरनाक, बहुत ज्यादा शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को, मैं तेरे बहने को देखता रहा दरिया, शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। हुआ है ना आपके साथ भी कभी ना कभी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।
2: सरकते जाए हैं

0: on Mirchi. It's hot.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है, दस्तूर है
2: कविता कॉर्नर। कविता कॉर्नर
1: कि आप कताशी सुनाए आपको आज की कविता हमारे कविता कॉर्नर में। और आज की कविता आ रही है निर्मला गर्ग जी की जानिब से। और ये कविता इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आठवीं का जो एनसीईआरटी की सिलेबस है उसमें ये कविता शामिल है, वहाँ पढ़ाई जाती है। कविता का नाम है फर्श पर। लिखती हैं कि चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर, सूरज आता है सजा जाता चिंदियां फर्श पर, मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर, मम्मी आती है बीनती दाल चावल फर्श पर, पापा आते हैं उतार देते जूते फर्श पर, मेहरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में जिन पे क्रैक्स पड़े हों। मेहरी आती है समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई पड़े हाथों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। क्लास स्ट्रगल के बारे में भी है ये कविता और फर्श के बारे में भी है कि किस तरीके से एक फर्श इतना सब कुछ देखता है और उसकी रोज की जो जर्नी है वो रीसेट होती है मेहरी के आने से। और क्लास स्ट्रगल के बारे में कि जिसकी मेहनत हमारे घर को साफ रखती है उसके हाथों के क्या हाल है, ये भी दिखाती है ये कविता निर्मला गर्ग जी की। एंड आई एम ग्लैड कि ऐसी कविताएं हमारे सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ, और हमारे एक बड़े ही पसंदीदा शायर हुए अमीर गजलबाज साहब, उनकी गजल के कुछ शेर आपके नजर कर रहा हूँ। मेरे को बड़े पसंद आए तो मैंने सोचा, नोट करके रखा मैंने कि आपको जरूर सुनाऊंगा। कहते हैं कि अपने हमराह खुद चला करना, कौन आएगा मत रुका करना। और शेर पे गौर फरमाएं कि यार क्या जिंदगी है सूरज की, सुबह से शाम तक जला करना। कुछ तो अपनी खबर मिले मुझको, मेरे बारे में कुछ कहा करना। मैं तुम्हें आजमाऊंगा आपके, तुम मोहब्बत की इंतहा करना। उसने सच बोलकर भी देखा है, जिसकी आदत है चुप रहा करना। लेकिन दोस्त ये जो शेर है ना, ये मेरे एकदम जहन में बैठ गया कि यार क्या जिंदगी है सूरज की, सुबह से शाम तक जला करना। स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल, ऐसी सुंदर सुंदर गजलें नज़में गीतों के लिए आपका ताशी रहेगा आपके साथ। It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
3: And I need your motivation level, Milind Soman. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपने डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। और दोस्त, जिंदगी में ना वाइट और ब्लैक कुछ नहीं होता, सब कुछ वो ग्रे वाला शेड होता है ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं। हर इंसान किसी के लिए दानव होता है और किसी के लिए देवता, ये सच बात है यार। अनवर शऊर साहब का ये शेर देखें आप, कहते हैं कि बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है। हाँ जी, बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है। कितनी सटीक बात कही है। और भला भले के अलावा बुरा भी होता है, ये भी हो सकता है सच यार, और क्या। तो इसीलिए वो शेर है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, वो भी सच है। बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है। वाइट और ब्लैक कुछ नहीं है भाई, हर चीज ग्रे का शेड है कहीं ना कहीं। हर इंसान में हर तरह की प्रवृत्ति जिंदा है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं.
1: Office के toilet में toilet paper white नहीं, yellow लगाओ. Profit आएगा.
0: Relative से advice लो तो कहते हैं.
2: काम को time दो. 25 घंटे काम करो. Dark circles होंगे तो future bright होगा.
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
3: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
4: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ। और देखिए, ये मोटिवेशनल लाइन तो हमने कई बार सुनी है कि जिंदा दिल रहो, जी रहे हो तो जिंदा दिखो, और ये सारी चीजें बहुत लोग कहते हैं। लेकिन इसको शायरी के अंदाज से, क्योंकि शायरी ना बड़ी नॉन प्रीची होती है, क्योंकि आपके दिल को जाके लगती है। शायरी में कोई भी बात इतने मजे से और इतनी खूबसूरती से कही जा सकती है कि इंसान को समझ में भी आ जाए और उसे वो कड़वी भी ना लगे। तो जैसे ये जो शेर है, बड़ा ही खूबसूरत शेर है, मुझे तो बड़ा पसंद आया, आजाद गुलाटी साहब का शेर है। कहते हैं कि कुछ ऐसे फूल भी गुजरे हैं मेरी नजरों से, कुछ ऐसे फूल भी गुजरे हैं मेरी नजरों से जो खिल के भी ना समझ पाए जिंदगी क्या है। वाह जी वाह। अब देखो, अब किसी को समझाने बैठते कि यार जिंदा हो तो जियो और ये करो और वो करो, तो बड़ा प्रीची हो जाता। वो बोलता है सुनो यार, आगे बढ़ो। लेकिन हल्का सा एक शेर सुना दो उसे, कह दो कि कुछ ऐसे फूल भी गुजरे हैं मेरी नजरों से जो खिल के भी ना समझ पाए जिंदगी क्या है। वो बोलेगा यार कुछ भी हो, बात तो सही कही है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने दाशी के साथ। और ऐसी कोई लाइनें आपके भी बड़ी करीबी हैं क्या, जो कि जिंदगी के फलसफों को बस चंद लाइनों में कह जाते हैं और एकदम दिल को बात लग जाती है कि नहीं, बताएं मुझे। अगर हाँ तो मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची दाशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
0: नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
3: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर अब वक्त आ गया है।
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: बिल्कुल लफ्ज आजकल का। और आज आपका ताशी जो लफ्ज आपके लिए लेकर आया है वो है अदाकारी। अदाकारी का मतलब आप शायद जानते भी हो, एक्टिंग होता है, नाउन है और फेमिनिन है। जो अदाकारी या एक्टिंग करता है उसे कहते हैं अदाकार। अब शेर में इस्तेमाल देखें इस लफ्ज का। अफजल खान लिखते हैं कि मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। वाह, यहां जो इस्तेमाल हुआ है अदाकारी का वो फेकनेस के प्रसंग से, फेकनेस के कॉन्टेक्स्ट से हुआ है कि प्यार करना है, एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करनी। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। तो अब अगर अदाकारी का कहीं भी इस्तेमाल होगा तो आपके पास ये शेर है सुनाने के लिए। ऐसा ही कोई लफ्ज अगर आपके जहन में हो तो लिख भेजें मुझे मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा। खूब मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
6: 89.6 FM, मिर्ची वन। It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और सच बताएं तो ऐसे मौकों पे ना समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और मेरे ऑफिस की ना दो लिफ्ट है। जिन मोहतरमा से हम एक जमाने में प्यार किया करते थे वो एक दिन ऑफिस आई और मेरे आने के साथ ही दूसरी लिफ्ट से नीचे चली गई। दोस्त ने बताया कि वो आई थी और मैं भी उससे ना मिल पाने को मान ही चुका था कि लिफ्ट खुली और वो उससे निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। कहती थी कि कुछ सामान छूट गया। मुझे जाज़िब कुरैशी साहब का शेर याद आता रहा कि कुछ मेरे धड़कते हुए दिल ने भी पुकारा, कुछ मेरे धड़कते हुए दिल ने भी पुकारा, कुछ आपको बाजार में धोखा भी हुआ है। कभी आपके साथ भी हुआ क्या ऐसा? अगर हाँ तो क्या किस्सा रहा? मेरे ख्याल से बड़े मजेदार रहे होंगे। शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्पररी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और जाते जाते मिर्ची महफिल में अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका दाशी आपको नजर करे एक नगमा जो मेरे जहन में क्या बताऊं बड़े दिनों से टहल रहा है। हाँ जी, भूपिंदर जी की आवाज में ये जो नगमा है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और आज के ताशी अनप्लग्ड में मुलायजा फरमाए।

ऐसा ही एक और गजलों, नज्मों, किस्सों, शेरों का कारवां बांध के लाएंगे अगले हफ्ते आपके लिए। अब आप ट्यून इन कर सकते हैं मिर्ची महफिल ऑन द गाना ऐप एज वेल। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।